Paris.

भजन करो हरे जगत जगतारे भजन

0: भजन करो।
1: साड़ी सर से आज मैं

0: आजीविका जाने सुने और अपनाए। नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो साथी मनीष कार्यक्रम आजीविका में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, आप जानते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए उनकी आय को बढ़ाने के लिए कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं इस बारे में हम कार्यक्रम बनाते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से उनको बताते हैं। कहा जाता है दोस्तों, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है और पद चिन्ह बनाने वाला ही इस जग में पूजा जाता है। हाँ दोस्तों, ये कहावत जो कही जाती है, सुनी जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है और उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। छोटी छोटी कहावतों से कहा जाता है कि हम जब किसी के पद चिन्हों पर चलते हैं, किसी के मार्गदर्शन से हम चलते हैं, किसी के मार्गदर्शन द्वारा हम चलते हैं, तो हम आगे चलकर एक सफल उद्यमी माने जाते हैं। जो कि हमने कार्यक्रमों में पहले भी बताया था कि उद्यमिता क्या है, उद्यमिता होने के क्या महत्व है। आज के साथी हमारे कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सफल उद्यमी के क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसे उनको व्यवसाय लगाने चाहिए जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो सकी। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में साथियों आपको ले चलते हैं हितेश धाकड़ जी के पास, जो उप निदेशक हैं हमारे औद्योग विभाग से, और साथ में कुछ हमारे विषय विशेषज्ञ हैं जो उद्योग को लेकर काफी अच्छी उनको पकड़ है। उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए और कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए जिससे हमारे युवा साथी अपने कार्य में सफल बने, आगे चलकर सफल उद्यमी कहलाए। तो आइए हम आपको हितेश धाकड़ जी के पास ले चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि हमारे युवा साथी किस तरीके से सफल उद्यमी बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। आइए इनसे बातचीत करते हैं। एक सफल उद्यमी जैसे हमारा साथी बनना चाहता है तो उसके लिए क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए?
1: एक सफल उद्यमी की पहली विशेषता होती है अनुभव।
0: जी,
1: अनुभव और उसका ज्ञान होना। आप जिस भी उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं या जिस भी व्यवसाय की आप स्थापना करना चाहते हैं, उसको आपको बारीकी से ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आप अगर हमारे युवा किसी उद्यम की स्थापना और अग्रेसित होना चाह रहे हैं या आकर्षित हैं, तो उन्हें पहले ये निश्चित करके कि आप करना क्या चाहते हैं और आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र विशेष में जहां आप उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं, वहां क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है।
0: जी जी,
1: क्योंकि देखिए मार्केटिंग भी बहुत बड़ा इशू आता है।
0: बिल्कुल,
1: केवल उद्यम लगाना ही पर्याप्त नहीं होता, मार्केटिंग स्किल भी होनी चाहिए।
0: जी,
1: तो सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है कि पहले तो मार्केट स्टडी करें, जिस चीज की आवश्यकता यहाँ पे है,
0: जी
1: किस चीज की उपलब्धता यहाँ पर है,
0: जी
1: और जो हम उद्यम चलाने वाले हैं उसकी मार्केटिंग हम किस तरीके से लोकल में या बाहर के क्षेत्रों में कर पाएंगे।
0: जी,
1: तो उससे उसको उद्यम लगाने से पहले हमारे युवाओं को थोड़ा सा बेसिक जानकारी उस चीज की होनी चाहिए।
0: जी जी जी।
1: अब बात आती है फाइनेंस की, क्योंकि वित्त पोषण भी एक समस्या रहती है उद्यमों के विकास के लिए।
0: जी,
1: तो काफी विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, शासकीय योजनाएं, मध्य प्रदेश शासन की भी योजनाएं हैं, केंद्र शासन की भी योजना, उनके अंतर्गत हम वित्त पोषण की सुविधा प्रदान कराएंगे।
0: जी जी। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि व्यवसाय तो ठीक है लोग लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को अगर देखा जाए, बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति को जाना जाए, तो क्या यहाँ पर कौन कौन से ऐसे व्यवसाय संभव है जो कि आसानी से लोग कर सकते?
1: देखिए, अगर ओरछा या फिर निवाड़ी जिले या इस बुंदेलखंड की बात की जाए तो यहाँ पे कई सारी संभावनाएं
0: हैं।
1: रिसोर्सेस हमारे पास प्रकृति की देन, प्रकृति की कृपा से हमारे पास काफी सारे रिसोर्सेज।
0: जी,
1: तो एक तो मिनरल्स के क्षेत्र में काफी कुछ किया जा सकता है।
0: जी,
1: हालांकि निवाड़ी के ओरछा तहसील में काफी सारी इकाइयां खनिज की लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त आता है आपका जो बढ़ती हुई जो आवश्यकताएं हैं, आप जो वुवन बैग्स होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि कल अक्टूबर के बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक का हमें खात्मा करना है,
0: जी जी जी,
1: सतर्क रहना है। तो फलस्वरूप एक उसकी वैकल्पिक उपयोग की आवश्यकता बढ़ेगी।
0: जी जी,
1: पॉलिथिन का वैकल्पिक क्या हो सकता है? तो हम जूट के थैले, वुगन बैग, जो क्या डिग्रेडेबल रहते हैं, जो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाते हैं, उसकी इकाइयों की स्थापना कर सकते हैं।
0: जी,

0: लोगों को कि उनको ट्रेनिंग्स की आवश्यकता रहती है, तो
1: जी
0: क्या
1: जी
0: सरकार की ओर से ऐसी कोई ट्रेनिंग्स लोगों को दिलाई जाने की बात की जा रही है, या फिर ट्रेनिंग्स दिलाते भी हैं यहाँ पर? जी
1: जी ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं अपने युवाओं को बताना चाहूंगा कि हर जिले में एक RCT की स्थापना की गई है, रूरल
0: जी
1: सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
0: जी
1: या उस जिले की अग्रणी बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। हमारे टीकमगढ़ जिले में SBI द्वारा संचालित किया जाता है। इसका
0: जी
1: मुख्य उद्देश्य ये लोगों को ट्रेनिंग देना, उद्यमिता से जुड़ी हुई ट्रेनिंग देना।
0: जी
1: हमारे इच्छुक युवा, हमारे इच्छुक भाई बहन जो भी उद्यमिता संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक आवेदन RCET टीकमगढ़ में कर सकते हैं, तथा उनको अगले बैच में जब उनका जो ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी तो उनको सूचना दे के उनको बुला लिया जाएगा। तो ये हर ट्रेड वाइज, हर उद्यम वाइज ट्रेनिंग रहती है, जिसके दिन अलग अलग रहते हैं। तो जो भी युवा इच्छुक इच्छुक है उनको हम ट्रेनिंग शासन की तरफ से मुहैया करा।
0: सर, कितने दिन की इसमें ट्रेनिंग से मुहैया कराते हैं?
1: ये ट्रेड के ऊपर निर्भर करता
0: अच्छा,
1: है,
0: ट्रेड के
1: जैसे
0: ऊपर।
1: कि किसी को 15 दिन की ट्रेड रहती है तो उसका 15 दिन का रहता है, किसी
0: जी
1: बीस दिन का रहता है, किसी एक महीने का रहता है, या किसी का 5 दिन का भी रहता है। वो तो ट्रेड के
0: अच्छा
1: ऊपर निर्भर रहता है कि
0: जी
1: आपको कितने दिन की ट्रेनिंग दी
0: सर,
1: जाएगी।
0: प्रशिक्षण के बाद यदि उसको प्रमाण पत्र मिलता है तो क्या बैंकों में उसकी, जैसे हम सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ उस प्रशिक्षण वाले प्रमाण पत्र को, तो उसमें कुछ सहूलियत होती है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देखो प्लस पॉइंट हमेशा आवेदक को मिलता है। वो ये वो जब वो सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो वो यह दर्शाता है कि उसके पास एक अन्य लोगों से विशिष्ट उपलब्धि है, उसको उस क्षेत्र का ज्ञान है, उस क्षेत्र का जो भी अनुभव है वो ट्रेनिंग में उसने लिया लिया गया है। तो मेरे अनुसार बैंक उसको अधिक कंसीडर करती है, उस पर अधिक विचार करती है और उसको जरूरी लाभ मिलता है।
0: अभी वर्तमान में सर उद्योग विभाग की ओर से कौन कौन योजना संचालित की जा रही है?
1: जी, वर्तमान समय में उद्योग विभाग में 4 योजनाएं संचालित की जा रही हैं रोजगार मूलक, जिसमें 3 मध्य प्रदेश शासन की योजना है और 1 केंद्र शासन की योजना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दूं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और किसान पुत्र पुत्रियों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना संचालित है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार की बात की जाए तो इसमें 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण सेवा उद्योग तथा व्यवसाय तीनों श्रेणी के लिए लिया जा सकता है। जबकि युवा उद्यमी की बात की जाए तो ये 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की योजना है। इसमें केवल सेवा और उद्योग की इकाइयों के लिए ही ऋण लिया जा सकता है, क्योंकि व्यवसाय शामिल नहीं है। और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 50,000 से लेकर 2 करोड़ तक है। इसमें सेवा, व्यवसाय तथा उद्योग तीनों प्रकार की इकाइयां स्थापित की जा सकती है।
0: अच्छा, केंद्र सरकार की सर कौन सी
1: हाँ,
0: योजना है?
1: एक केंद्र सरकार की योजना भी हमारे यहाँ संचालित है, वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।
0: सृजन कार्यक्रम?
1: ये योजना 50,000 से लेकर 25 लाख तक है।
0: अच्छा,
1: जी, और इसमें सेवा तथा उद्योग की इकाइयों को ही कई स्थापना की जा सकती है। इसमें व्यवसाय आपात श्रेणी में है।
0: चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे युवा साथियों को एक मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि उद्यमिता के क्षेत्र में लोग अपने एक तरीके से विचार कर रहे हैं कि अब क्योंकि नौकरियां बहुत ही कम देखने को मिल रही हैं और बहुत ही कम रोजगार हो गए हैं, तो लोग अब उद्यमिता की ओर रुख कर रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण जानकारी देकर हमारे युवा साथियों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए धन्यवाद सर आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।

अपना रेडियो अपनी बात है। एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, हमारे हितेश ढाकड़ जी ने कितनी अच्छी जानकारी हमारे युवा साथियों को दी कि किस तरीके से हमारे युवा साथी एक सफल उद्यमी बनने के लिए उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्या उनको कार्य करने चाहिए जिससे वो सफल हों, अपने जीवन में सफल हों, अपने व्यवसाय में सफल हों। साथियों, आप जानते हैं कि क्या बातें हैं सबसे जरूरी कार्य में आनंद करने के लिए। ये एक गुण होता है जो आपको एक सफल उद्यमी बना सकता है। दूसरा, कि गंभीरता, आप तब तक अपने व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपका उसमें अटूट विश्वास ना हो। ये एक दूसरा गुण होता है जो आपको सफल उद्यमी बनाने में मदद करता है। तीसरा साथियों, आत्मविश्वास की कमी, जो कि हितेश जी ने बताया था कि आत्मविश्वास आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास किसी भी नए उद्यमी के लिए आत्मविश्वास सबसे जरूरी होता है। चौथा साथियों, योजना आपको

बनानी चाहिए कि हमें कौन सा व्यवसाय लगाना है, कैसे लगाना है। पूर्ण योजना के साथ यदि हम व्यवसाय करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। अगली जो साथियों आपको सफल उद्यमी बनाने का गुण हम आपको बताते हैं, अगली जो गुण होना चाहिए हमारे युवा साथियों को जो सफल उद्यमी बनने के लिए, वो होने चाहिए खतरे उठाने वाला होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जोखिम आएंगे आपको यदि आप उद्यम डालते हैं तो। आपको सबसे पहले मार्केट बनाना होता है और इसके बाद मार्केट के साथ साथ बहुत सारी समस्या जो रहती हैं वो सामने आती हैं। तो ऐसे में खतरे उठाने वाला होना चाहिए, सब तभी एक सफल उद्यमी वो बन सकता है। विशेषज्ञता रखने वाला होना चाहिए, यानी हर विषय में उसको जानकारी होना चाहिए। संबंध जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसकी विशेषज्ञता आपके पास होना चाहिए। खुद में निवेश करने वाला होना चाहिए। यदि ये सारे गुण आपके अंदर हो तो आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं और आप आगे जा सकते हैं। साथियों कार्यक्रम में हम एक विराम लेते हैं, यानी लोकगीत के साथ मनोरंजन करते हैं। इसके बाद साथियों आपकी हमारी बातचीत होगी और आपको हम विमल जी के पास ले चलते हैं। और विमल जी चूंकि विषय विशेषज्ञ हैं उद्यमता को लेकर, तो उनसे जानते हैं कि आखिरकार हमारे युवा साथी यदि कोई व्यवसाय डालना चाहते हैं तो सफल बनने के लिए कौन कौन से गुण उसमें होने चाहिए, कैसे सफल हमारा व्यवसाय बन सकता है हमारा युवा साथी। तो आइए इस प्यारे से लोकगीत को हम सुन लेते हैं।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने हर प्रसाद कुशवाहा और उनकी साथियों में इस प्यारे से लोकगीत को सुना। आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे विषय विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सफल उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आइए उनकी बातचीत को हम सुनते हैं विमल जी के साथ।
1: ऐसे में हम क्या करें कि अपनी आय को बढ़ाएं या एक रेगुलर आय हमारे पास में एक आती रहे, जिससे कि हम करें, तो उसका ये कि है कि हमें कृषि के अलावा भी अन्य वैकल्पिक साधनों को खोजने की जरूरत है।
2: जी जी।
1: तो हम अपने क्षेत्र में क्या चीज ऐसी करें, कुछ ऐसा कुछ छोटा सा उद्योग लगाएं जिसमें बहुत कम पूंजी में कुछ उद्योग लगा करके कुछ ऐसा काम करके हम जो है वो अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में किन चीजों की खपत है, उन खपत के अनुरूप ही हमको उद्यम लगाने की जो है वो आवश्यकता है।
2: जी।
1: अगर हमारे यहाँ पर तेल तिलहन अधिक हो रहा है तो हम तेल का कुछ लगा लें, अगर हमारे यहाँ मसाले अधिक है तो मसाले की चीज लगा लें। तो कैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कोई आंवला जैसे हमारे यहाँ हो रहा है तो हम आंवले के अच्छा

0: हर साल ये हम एक छोटा सा उद्यम लगा सकते हैं,
1: जी
0: कई प्रकार के उत्पाद जो है उसके भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं, हमको बहुत छोटी सी कोई हम महीने भर की ट्रेनिंग या 2-3 महीने की ट्रेनिंग लेकर के और किस प्रकार से उस प्रोडक्ट को लंबे समय तक हम बना सकते हैं और छोटा छोटा उद्योग लगाए, तो ये भी अगर हम प्रयास करें तो हम अपने आय के साधन में जो है वो वृद्धि कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी।
0: धन्यवाद।
1: अपना रेडियो अपनी बातें, आप हैं इस वक्त आपके अपने रेडियो साथी मनीष के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम आजीविका को। और साथियों, अभी आपने बिमल जी से इतनी अच्छी जानकारी को जाना समझा और हमें तो लगता है कि अब हमें स्वयं का व्यवसाय करने में कुछ देर नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास ये सारे गुण हैं अच्छे उद्यमी बनने के लिए, तो आप तुरंत उद्यम स्थापित आपको करना चाहिए और उद्यमिता में आप एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आम तौर पर किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय में सफल होने के लिए उसके एक से अधिक पक्षों पर ध्यान देना होता है, परंतु एक उद्यमी की सफलता में सीधे तौर पर व्यवसाय से जुड़े पक्षों के अलावा कई ऐसे पक्ष भी जुड़े जाते हैं जिन्हें उसे काम शुरू करने से पहले और काम करते समय लगातार अभ्यास में लाना पड़ता है। क्या होती है एक सफल उद्यमी की विशेषता, आइए आपको हम थोड़ा और बता देते हैं, क्योंकि हमारे विषय विशेषज्ञ और साथ में उद्योग विभाग के उपनिरीक्षक ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए आपके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए। हमने भी आपको बीच बीच में बताया कि हमारे युवा साथी किस तरीके से एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों, उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। वह ग्राहकों को तैयार करता है और ग्राहक रोजगार और आर्थिक विकास को आगे ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक उद्यमी की राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका होती है। दरअसल विकास के एक पड़ले पर अगर रचनात्मकता और विचार, खोज और नवीनीकरण देखते हैं, तो दूसरे पड़ले पर आर्थिक और व्यापारिक पक्ष नजर आता है। इन दोनों पड़नों को यदि हम अपनी अनोखी सोच से साधने वाले व्यक्ति ही एक सफल उद्यमी कहलाते हैं। कहा जाता है कि क्या सचमुच एक सफल उद्यमी पैदा नहीं होते हैं? इस सवाल के जवाब में यह कहा जाता है कि एक सफल उद्यमी में कुछ प्रतिशत जन्मजात प्रतिभा होती है और बाकी वह सीख सकता है। यह भी कहा जाता है कि उद्यमी एक घोड़े की तरह होता है जो नवीन विचारों की गाड़ी को खींचता है, और उसका मतलब एक सफल उद्यमी होने के लिए व्यक्ति में एक साथ कई गुण बहुत जरूरी रहते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं और अन्य वह काम और अनुभव के साथ साथ चमका सकता है। व्यवसाय विशेषज्ञों का यही कहना है कि सफल उद्यमी किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं और वह समाज के किसी भी घड़े में आ सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि उच्च शिक्षा उसको अंदर होनी चाहिए और उनके व्यक्तित्व के अलग अलग तरह के वो हो सकते हैं। इसलिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कई स्थानों पर उद्यमी के लिए उच्च शिक्षा ज्यादा काम आती है, लेकिन अपने काम को बुनियादी जानकारी जरूर काम आती है। जरूरी नहीं है कि आप प्रथम श्रेणी के उद्यमी ही साबित हों। प्रथम श्रेणी से मतलब ऊंचा लक्ष्य रखने वाला और हर समय काम करता हुआ दिखने वाला श्रेणी के छात्री सफल उद्यमी साबित होते हैं, ये कहा जाता है। तो साथियों, आप भी एक सफल उद्यमी बनिएगा और अपने व्यवसाय को आगे ले जाइएगा। कुछ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिएगा और आप अपने व्यवसाय की ओर मुड़िएगा। इसी के साथ साथियों, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। तो हमें आशा है कि कार्यक्रम सुनकर आपके मन में कई सारे सवाल और कई सारे विचार आ रहे होंगे, तो आप जरूर पूछेगा। नंबर आप नोट कर लीजिएगा, नंबर है हमारा 9219207749। व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसमें क्या जुड़ना चाहिए ये भी आप जोड़ सकते हैं हमारे इस नंबर पर। दोस्तों, हमारा नंबर है 9219207749।

0: 7749।
1: यदि हमारे श्रोता साथी चिट्ठी के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, पता नोट कर लीजिएगा। पता है हमारा, रेडियो बुंदेलखंड है 90.4 ताराग्राम और छतीगला के पास ओरछा। तो साथियों, अगले कार्यक्रम में किसी नए व्यवसाय, किसी नए सोच के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपने रेडियो साथी मनीष को दीजिए जाने की इजाजत, और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत अजीब का से जुड़ा। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए हम तमाम प्रकार की रोजगार सूचनाएं हो या उनके कैरियर संबंधी जानकारी हो उस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने श्रोता साथियों तक पहुँचाते रहते हैं। आज चूंकि आज एक बहुत बड़ा विशेष दिन है और आज के हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज चूंकि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है, चूंकि हर कोई रोजमर्रा की जिंदगी में यथासंभव स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता को महत्व देता है, मरीज और फिटनेस के शौकीन आमतौर पर चोट, बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के कारण होने वाली गति संबंधी विकारों से जुड़ी शारीरिक अक्षमताओं के लिए फिजियोथेरेपी सेवाओं की तलाश करते हैं, जो उनके लिए जरूरी या महत्वपूर्ण किसी भी गतिविधि को करने या करने की उनकी क्षमता में बाधा डालती है। स्वास्थ्य सेवा द्वारा अपनाई जाने वाली अनेक प्रतिक्रियाओं में से चिकित्सीय व्यायाम एक प्रमुख तत्व के रूप में अपना स्थान रखता है, जो किसी व्यक्ति के कार्य को सुधारने या बहाल करने या शिथिलता को रोकने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को केंद्र में होता है, जैसे कि संतुलन में सुधार, समन्वय विकसित करना, प्रगतिशील लचीलापन, गतिशीलता में सुधार, मांसपेशियों का प्रदर्शन और तमाम प्रकार की, चूंकि हम डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर ही बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें मिल गए हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी। आज आप किसी परिचय के मोहताज, नाम आपने सुना ही होगा, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, हमारे मित्र हैं मनोज द्विवेदी जी। आप चिरंजीवी हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट के रूप में वहां पर सेवाएं दे रहे हैं, बहुत सारे मरीजों को उन्होंने सही भी किया है और सोशल मीडिया के माध्यम से बताते भी रहते हैं। तो खास बातचीत में आप सुनिएगा कितनी महत्वपूर्ण रहता है ये फिजियोथेरेपी हमारे स्वास्थ्य के लिए। चलिए डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं।

0: सबसे पहले मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो बुंदेलखंड के सभी श्रोताओं को। मुझे बड़ी खुशी है रेडियो बुंदेलखंड के मंच पर आने पर, और चूंकि ये चैनल मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता और जानकारी भी प्रदान करता है, तो सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मनोज जी, हम जानना चाहेंगे कि चूंकि विश्व थेरेपी दिवस, चूंकि एक अलग लोगों को समझ में भी नहीं आता, खासतौर पर अगर ग्रामीण परिवेश में अगर देखा जाए, जोड़ा जाए इसको, तो इसकी शुरुआत, इतिहास किस तरीके का रहा है, थोड़ा हमारे साथ बताइएगा।
1: देखिए, इसकी शुरुआत 19वीं सदी में यूरोप से शुरू हुई
0: जी।
1: और जैसे कि वर्ल्ड वार टू, और इस दौरान बहुत सारी कैजुअल्टी और बहुत सारी इंजरीज हुई, तो उस दौरान विकलांगता या जो इंजरीज के दौरान चलने, उठने, बैठने में असमर्थता आई, तो उसके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल या भूमिका अहम होती चली गई, वहां से ये विकसित होता चला गया। दूसरी बात कि भारत में स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे इसका समावेश होता चला गया, और आज ये किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत अहम भूमिका प्रदान कर रही है
0: जी। मतलब एक चीज जानना चाहेंगे कि जो फिजियोथेरेपी, और खासतौर पर आप स्पेशलिस्ट भी हैं, आप इतने सालों से सेवाएं दे रहे हैं, किस तरीके की मरीज यहाँ को देखने को मिला है आपको, किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, और खासतौर पर ये इलाज किस तरीके से लोगों को एक रामबाण साबित होता दिखाई दे रहा है।
1: देखिए, मैं करीब करीब बुंदेलखंड क्षेत्र में 15 साल से फिजियोथेरेपी की सेवाएं दे रहा हूं। खासकर अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, तो बहुत सारे हमारे ग्रामीण भाई बहन अपने खेतों में काम करते समय या अपने गांव देहात में मजदूरी करते समय बहुत सारी परेशानियों से जूझते हैं। जैसे खेतों में काम करते समय कमर की तकलीफ होना, या लंबे समय तक झुके रहने की वजह से गर्दन में समस्या होना, या बुवाई के समय खासकर

0: जो है किसान भाई जो है हमारे, तो उनको घुटनों में दर्द होना, तो इस तरह की समस्याएं लेकर जब हमारे पास आते हैं तो उसमें बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं जिनका फिजियोथेरेपी के माध्यम से इलाज किया जाता है।
1: सर एक चीज और जानना चाहेंगे, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होंगे हमारे साथी, फिजियोथेरेपी और नॉर्मल जो इलाज कराते हैं क्या अंतर दिखाई देता है और क्या लोगों को समस्याएं आती हैं?
0: देखिए, आज के समय में बहुत सारे जो हमारे जागरूक भाई बहन हैं तो उनका ये मानना रहता है कि अगर बिना दवाई या बिना जो है ऑपरेशन के क्या कोई ऐसी पद्धति या चिकित्सा विधि है जिसके माध्यम से हम ठीक हो सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि बहुत सारी परेशानियां जैसे कि मांसपेशियों का दर्द हो गया या जोड़ों का दर्द हो गया या नसों का दर्द हो गया या कुछ समस्याएं ऐसी हैं जैसे कि लकवा हो जाना या किसी अंग का काम नहीं करना, तो ऐसी समस्याओं में भी हम एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी या व्यायाम या कुछ मशीनों के योगदान या सिकाई से भी उसमें लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये पद्धति चिकित्सा क्षेत्र की ही है, तो कई बार बीमारियों में मेडिसिन के साथ साथ या दवाइयों के साथ साथ भी फिजियोथेरेपी का योगदान रहता है।
1: जी, खास तौर पर सर देखा जाता है, अगर ग्रामीण अंचल की बात करें तो देखा जाता है कि लोग अगर कुछ भी समस्या आती है, खास तौर पर अगर उनको पैरों में दर्द हुआ या फिर चेस्ट पेन हुआ, इस तरीके का कोई भी समस्या आती है, पेन किलर जो रहती है, दर्द निवारक गोलियां जो रहती हैं खासतौर पर, वो खा के उसका निदान कर लेते हैं। आपको क्या लगता है इससे लोगों के शरीर में जो नुकसान दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पर आज जो विकट समस्याएं सुनने को और देखने को मिल रही है, कैंसर जैसी समस्याएं, बहुत सारे एक्सपर्ट भी कहते हैं कि आजकल बहुत सारी ऐसी दवाइयां और रोज रोज दवाइयां खाने से हमारे शरीर में बहुत सारा नुकसान होता है, क्या कहना चाहेंगे?
0: मनीष जी, ये आपने बहुत ही उम्दा सवाल उठाया है और इसका मुझे लगता है कि हमारे हर भाई बहन को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए, हर छोटी समस्या के लिए तुरंत पेन किलर ले लेना या दर्द निवारक दवाई का सेवन करना उचित नहीं है जब तक कि वो बहुत ज्यादा विकट समस्या का रूप ना ले ले। मैं कहूंगा कि छोटे या छोटे मोटे शारीरिक कष्ट के लिए आपको दर्द निवारक दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर आप करते भी हैं तो आपको डॉक्टर की उचित सलाह के बाद लेना चाहिए। रही बात छोटे दर्द वगैरह के लिए या छोटी मोटी दिनचर्या में जो आप कष्ट लेते हैं उसके लिए, तो आप उसके लिए छोटे मोटे व्यायाम, अपनी दिनचर्या में बदलाव और सही पोषण के माध्यम से आप उसको ठीक किया जा सकता है।
1: जी, लेकिन यहाँ पर तो समस्या यही आती है कि लोगों को, चूंकि ऐसा माना जाता है, चूंकि मैं जाना स्पेशलिस्ट नहीं हूँ उस चीज में, लोग कहते हैं कि फिजियोथेरेपी से और जो हम लोग नॉर्मल दवाइयां लेते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है, फिजियोथेरेपी कराने में थोड़ा समय लगता है, जो कष्ट रहता है उनको, जो दर्द रहता है वो फिजियोथेरेपी से क्या धीरे धीरे जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। आपका क्या मानना है कि ये क्या चीज बताता है?
0: देखिए, मैं कहूंगा कि फिजियोथेरेपी भी लाभ देती है और दवाइयां या और जो पद्धति है वो भी लाभ देती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूं कि जैसे आर्थराइटिस है या गठिया हम कहते हैं, तो गठिया में बहुत सारी चीजें हैं जैसे सूजन बढ़ रही है या किसी जोड़ के बीच में इन्फ्लामेशन या संक्रमण फैल रहा है, तो उसमें योगदान रहेगा मेडिसिन का या दवाइयों का जो उस संक्रमण को रोकने का काम करेगी। लेकिन अगर उस जोड़ में संक्रमण के साथ साथ मांसपेशियां भी कमजोर हो रही हैं या स्नायु टाइट जकड़ रहे हैं या टाइट हो रहे हैं, तो उस कमजोरी को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी का योगदान लिया सकता है और उस संक्रमण को कम करने के लिए दवाइयों का योगदान लिया सकता है, तो दोनों का ही सम्मिलित रूप मरीज को और बेहतर तरीके से ठीक कर सकता है।
1: ऐसा नहीं लगता है कि मतलब इसमें जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ देर बाद आएगा, कुछ दिनों बाद आएगा, ऐसा लोग कहते हैं, आपका क्या
0: ये
1: मानना?
0: बिल्कुल सही कहना है मनीष जी आपका।
1: जी
0: है क्या कि फिजियोथेरेपी जब हम प्रारंभ करते हैं किसी समस्या को लेकर के, तो हमें उन मांसपेशियों को या उस जोड़ को पूरी तरह से ठीक करने में या सामान्य लाने में एक समय लगता है। हो सकता है कि यह समय कुछ दिनों से लेकर के महीनों तक में लग जाए,

0: क्योंकि जितनी पुरानी समस्या होगी उसको ठीक होने में भी उतना समय लगेगा, जितनी गंभीर समस्या होगी उसके उपचार में भी उतना ज्यादा समय लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी थोड़ा सा टाइम ले सकती है पूरी तरह से ठीक होने में।
1: एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, खासतौर पर जब हम समुदाय के पास जाते हैं तो एक बहुत बड़ी विकट समस्या देखने को और सुनने को मिल रही है कि खास तौर पर महिलाओं और पुरुषों के घुटनों में ये दर्द होता है। क्या मानना है, किस कारण से होता है, क्या खान पियन से होता है, खान पान से होता है, क्या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे होता है, क्या लगता है किस तरीके से आजकल ये जो समस्याएं देखने को मिलती और दिन प्रतिदिन ये बढ़ती चली जा रही है, इस इलाज इसको फिजियोथेरेपी में किस तरीके से कर सकते हैं?
0: मनीष जी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि हम युवा अवस्था में हैं
1: जी,
0: तो उस दौरान बहुत सारे जो है खेल कूद के दौरान या हमारे कुछ क्रियाकलाप के दौरान चोटें लग जाती हैं
1: जी।
0: उन चोटों की वजह से हो सकता है उस युवा अवस्था में, चूंकि हम अभी यंग हैं, हमारी मांसपेशियां मजबूत हैं, हमारे जोड़ मजबूत हैं, तो ये समस्याएं हो सकता है उस समय या उस अवस्था में कम महसूस हो, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वो जो पुरानी चोटें हैं ये उभर के आने लगती हैं या हमारे जोड़ को बहुत जल्दी जो है संक्रमित करना शुरू कर देती हैं। तो एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये है कि अगर हमारा खान पियन अच्छा नहीं है, हमारा जो दैनिक दिनचर्या है वो बहुत हमारी फिजिकल एक्टिविटी या हमारे शारीरिक व्यायाम से संबंधित कह लीजिए वो कम है, तो हमारी मांसपेशियां कमजोर रहेंगे जो उम्र के साथ हमारे जोड़ों को प्रभावित करेंगे। दूसरा, अगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे गठिया हो गया, डायबिटीज हो गया या और भी तमाम तरह की समस्याएं हैं, वो भी इन जोड़ों को बहुत जल्दी प्रभावित करती है। अगला कारण ये हो गया कि अगर हमारी जलवायु में, खासकर जो है ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे कि अब बहुत ज्यादा क्लाइमेट परिवर्तन की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है या सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो वह भी हमारे जोड़ों को प्रभावित करती है जिनसे ये समस्याएं होना शुरू हो जाती है।
1: इसका निदान किस तरीके, चूंकि फिजियोथेरेपी आप काफी सालों से इस पर काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारी डिग्रियां भी हासिल की हैं और खासतौर पर आपने एक फोकस तरीके से इसको चीज को बिल्कुल बारीकी से लिया है, ग्रामीण अंचल की अगर बात करें तो ग्रामीण अंचल के लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं खासतौर पर इस फिजियोथेरेपी को लेकर?
0: देखिए, अगर आपको कुछ भी मांसपेशी संबंधित या जोड़ों से संबंधित समस्या होती है तो हमारा ये मानना रहता है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा आराम मिल जाता है उस तकलीफ में, फिर हम काम में लग जाते हैं। तो मैं कहूंगा ये पद्धति ना अपनाएं। अगर आपको समस्या लंबे समय से है या वो समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो मैं कहूंगा कि अपने डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह जरूर लें और उनका मार्गदर्शन लेकर के उन चीजों को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें, जिससे आप समस्या से बच सकते हैं और समस्या से निदान भी पा सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात की है। और साथियों, हम चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वातावरण बदल रहा है और खास तौर पर यह आज हम जो बीमारियां सुनने की और देखने को मिल रही हैं, बहुत चिंताजनक बात है, हमें इसको समझना होगा। खास तौर पर ग्रामीण अंचल में इस बात पर हमें विचार करने की जरूरत है कि हमें कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी के ओर रुख करना होगा और यही इलाज है, क्योंकि आजकल ये जो बीमारियां सुनने को मिल रही हैं उसका सिर्फ एक ही इलाज है, किस तरीके से हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम इसका निदान पा सके। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब अगले चरण में फिर से मिलेंगे, अगले भाग में जरूर मिलेंगे, कैरियर किस तरीके से बना सकते हैं इस पर हम जरूर बात करेंगे। बने रहिए आपके दोस्त मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4 FM।
0: नमस्कार।

बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और ये विशेष कार्यक्रम है आज, चूंकि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है, बड़े धूमधाम से, चूंकि डॉक्टरी लाइन में से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, अपना एक महत्व भी रहता है। और खास बातचीत हमारे डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी से आपने सुनी है, कितनी महत्वपूर्ण रहती है। और मतलब ये कहेंगे कि बुंदेलखंड का सबसे बड़ा फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर तमाम प्रकार के

साइज के माध्यम से और बहुत सारी आधुनिक मशीनों द्वारा यहाँ पर तमाम प्रकार के लोगों को, मांसपेशियों में जिनको खिंचाव है या पर किसी को लकवा मार गया है, तो एक एक्सरसाइज के माध्यम से किस तरीके से वो लोगों को राहत दे रहे हैं, बड़ा। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी को, जिन्होंने ये प्रयास किया है, बुंदेलखंड क्षेत्र में एक वरदान साबित हो रहा है। चिरंजीव स्पोर्ट इंजरी सेंटर जो कि हॉस्पिटल में है, डॉक्टर मनोज द्विवेदी, तो खास बातचीत आपने सुनी है, और भी हम तमाम प्रकार की बातचीत हम लेकर आएंगे। तो कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 92 19 20 77 49, या फिर हमारे इस पते पर आप चिट्ठियां भी लिख सकते हैं, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगैला के पास ओरछा, और आपके रेडियो साथी मरीज लेते हैं जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

नीति अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमाई गांव हमाई सरकार। इस कार्यक्रम को साथियों हम बहुत दिन से चलाओ चले आ रहे हैंगे और कोशिश कर रहे हैंगे कि हमारे श्रोता साथी सबसे पहले जब ग्राम विकास की बात आतेगी तो ग्राम विकास में सबसे ज्यादा सरपंचन को अहम भूमिका रहतेगी, आपको भी पता है और सब साथियों को हमारे पतो भी है गो। और तो और साथियों अभी से अपन को ग्राम पंचायत जब से गठित हो गई हैगी अपन को का करने हैंगे सरपंचन के संगे मिलके अपने ग्राम विकास को खाका तैयार करने है गो। संगे संगे जो नियमावली हैगी वह नियमावली के अनुसार अपन को काम करने हैं। सबसे पहले एजेंडा तैयार करने कि हमारे ग्राम पंचायत में कौन कौन से ऐसे काम रह गए हैंगे जो पंचायत कराते हैंगे और जिनकी मूलभूत आवश्यकता हैगी। तो सबसे पहले अपन हो जैसे बरसात को मौसम चल रहा है गो, बरसात के मौसम में सबसे पहले जब बैठक हुई हैगी तो बैठक में अहम चर्चा अपन हो का करने है गो के सबसे पहले अपन हो एजेंडा तैयार करने खेती किसानी को कि खेती किसानी में हमारे किसान साथी कैसे काम कर सकते हैं, पानी को कैसे संरक्षित कर सकते हैंगे, बरसात के पानी को कैसे रोक सकते हैंगे, मेड़ बंधन कौन तरीके से करा सकते हैंगे, तालाब गहरीकरण कौन तरीके से हो सकते है गो। संगे संगे अपने पेयजल की का व्यवस्था है, सड़क की का व्यवस्था हैगी, शिक्षा की का व्यवस्था हैगी, रोजगार में जब अपन रोजगार की बात करते हैंगे तो ग्राम पंचायत में मनरेगा में बहुत सारा काम आते है गो, बाकी का व्यवस्था है। तो ये सारे चीजें अपन को लिख के वैसे तैयार करके रखने आगामी ग्राम सभा जब भी हुई है तभी अपन को ये एजेंडा जो आपने तैयार करो, ये रूपरेखा आपने जो तैयार करी ग्राम पंचायत में लेके जाने हैंगे और सरपंचन के संगे जो बैठक होते हैगी ग्राम सभा की बैठकें होते हैंगी उनको जाके अपन को बताना है कि जे जे मूलभूत आवश्यकता है आप अपन को ग्राम विकास पे अपन को काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हैगी। तो ये मूलभूत चीजें हैं जो अपन को सोचने हैं समझने हैंगी। दूसरी बात आतेगी कि स्वयं सहायता समूह हर ग्राम पंचायत में बन रहेंगे। तो ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत और स्वयं सहायता समूह की का भूमिका रहता है ग्राम पंचायतों में वह विषय पर आज अपन बतकाव कर बेबारे हैंगे। छोटी छोटी बातें अपन ध्यान में रखे हैं कि कैसे बहुत ज्यादा आवश्यकता रहता है खासतौर पर स्वयं सहायता समूह जो काम करते हैंगे मिलके जब काम करते हैंगे तो बहुत अच्छा लगता है, आनंदित होते हैं, बहुत सारी चीजें निकल के आते हैं। तो वो विषय पर अपन बतकाव कर भी जा रहे हैं लेकिन अपनी बातचीत काफी हो चुकी है तो अपन का ना अपन इतने 900 लोग गीत को सुन लेते हैंगे और गीत के बाद अपन आज हम जाने कि ग्राम पंचायत और स्वयं सहायता समूह की भूमिका, खासतौर पर ग्राम पंचायतों में भूमिका स्वयं सहायता समूह की, स्वयं सहायता समूह की का भूमिका रहेगी जहाँ पे भी एक प्रकाश डाले हैंगे का पात्रता ग्रामीण युवक और जो गरीब हैंगे उनको का सहयोग मिलना चाहिए, विशेष समूह जो बनाते हैं कैसे बनाते हैंगे, घटक कार मापदंड का रथ है उन विषय पर अपन चर्चा करेंगे लेकिन जैसे पहले अपन सुनते हैं जो 900 गीत को बने रहो आपके आरजे मनीष के साथ सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बात है।

अपना रेडियो अपनी बातें अभी आप सुन रहे थे उत्तम सिंह यादव और उनके साथियों के आवाज में एक प्यारे से गीत को साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ात भाई अपन जानत हैं कि ग्राम पंचायत में खास तौर पर स्वयं सहायता समूह की क्या भूमिका रत हैगी बाबे साहब पर अपन बातचीत कर रहे हैं। आपको पता हो चाहिए कि आजीविका कौशल के सफल क्रियान्वयन में विशेष कर अपने अधिकार के क्षेत्र में अत्यंत निर्धन परिवार को लाभ पहुंचाने में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका रत हैगी, क्योंकि आजीविका कौशल में कौशल विकास के लाने ग्रामीण सेचुरेशन अप्रोच अपनाई गई जाकि लाने कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने जानकारी प्रदान करने के प्रयासों में मदद करने कौशल विकास की मांग और नियोजन के लिए डाटाबेस तैयार करने जॉब मेला के आयोजन में मदद करने तथा क्रियान्वयन के सभी स्तरों पर पीआरए की सहायता करने में ग्राम पंचायत मुख्य भूमिका निभाते है। ग्राम पंचायतों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत होगी कि महिलाएं अधिक अत्यंत कमजोर वर्ग कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शामिल हैं, उन्हें संभावित उम्मीदवारों और संभावित उम्मीदवारों के अभिभावकों के साथ एक विशेष काउंसलिंग सत्र आयोजित करना होगा और कार्यक्रम की संभावनाओं के बारे में उन्हें जानकारी देनी होगी। जब पीआईए कौशल विकास का प्रशिक्षण देती है तब ग्राम पंचायतें विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट प्राप्त करके तथा प्रशिक्षण पाने वाले उम्मीदवार के साथ सीधी बातचीत करके क्रियान्वयन पर नजर रख सकती है। ग्राम पंचायतों का क्रियान्वयन संबंधित मुद्दे जिला और राज्य मिशन के संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। ग्राम पंचायतें प्रशिक्षण के पश्चात उम्मीदवारों के लिए को दिए गए काम पर नजर रख सकती है। काम के विभिन्न पहलुओं की निगरानी करने के लिए उम्मीदवारों और उनके अभिभावकों के साथ बातचीत कर सकती है। शिकायत निवारण के हिस्से के रूप में कार्य कर सकती है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका जो रहती है वो आजीविका कौशल में कौशल विकास के माध्यम से निर्धन परिवारों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है इसमें, और निर्धनों की संस्थाओं की क्षमताओं का इस्तेमाल करके नियोजन का लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। निर्धनों की संस्था HSG यानी स्वयं सहायता समूह, उनके संघ और तथा आजीविका क्रियाकलाप निर्धनों को स्वयं सहायता पर आधारित सामूहिक क्रियाकलापों तथा पारस्परिक सहयोग के लिए मंच मुहैया कराती है। लक्ष्य में रखे हुए लाभार्थियों को एकजुट करने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने लाभार्थियों को निर्धारण में सहायता करने का निर्धारित युवकों के अभिभावकों हेतु काउंसलिंग सत्रों का आयोजन में मदद करने पीआईए द्वारा क्रियान्वयन की निगरानी करने आदि सहित विभिन्न क्रियाकलापों में इन संस्थाओं को शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार पीआईए को अपनी परियोजना का क्रियान्वयन की कार्य नीति तैयार करने में एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह की भूमिका को ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यानी जरूरत है। अब बात आती है पात्रता। ग्रामीण युवक जो गरीब हैं, 18 से 35 वर्ष की आयु के निर्धन ग्रामीण युवक आजीविका कौशल के लिए लक्ष्य समूह हैं। विकलांग व्यक्तियों तथा विशेषकर अपेक्षित जनजाति समूह यानी PTG के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष इसमें रखी गई है। विशेष समूह जिनमें विकलांग व्यक्ति, अवैध व्यापार में पीड़ित व्यक्ति, सर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति, किन्नर, पुनर्वास किए गए बंधुआ जो मजदूर है को 16 वर्ष से अधिक की आयु में भी नामांकन की अनुमति दी जा सकती है, वशर्ते कि वे जॉब संबंधित प्रशिक्षण सहित अन्य प्रशिक्षण का कार्य पूरा होने तक 18 वर्ष के हो जाएं। निर्धनों का भागीदारी पूर्ण निर्धारण नामक प्रक्रिया के जरिए निर्धनों

का निर्धारण किया जाएगा। यह प्रक्रिया एनआरएलएम कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस परियोजनार्थ मंत्रालय द्वारा पीआईपी के लिए अधिसूचित किए गए प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाएगा। इस संभावना व्यक्त की जाएगी कि पीआईपी से लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्ष्यबद्ध करने में मदद इसमें मिलेगी। जब तक पीआईपी के उपयोग से निर्धनों का निर्धारण किया जाता है, तब तक आजीविका कौशल के लिए लक्ष्य समूह के निर्धारण में बीपीएल परिवारों की मौजूदा सूची का इस्तेमाल किया जाएगा। उपयुक्त के अलावा ऐसे युवक जो विगत 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मनरेगा कार्यस्थलों पर काम से कम 35 दिनों तक श्रमिक के रूप में कार्य कर चुके हैं, बीपीएल सूची में ना होने के बावजूद इसके लिए पात्र होंगे। ऐसी आशा जताई गई है कि पीआईपी के दौरान उनका निर्धारण कर लिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर विशेष बल, राष्ट्रीय स्तर पर 50% निधि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित की जाएगी। इनके बीच निधियों के अनुपात का निर्धारण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर किया जाएगा। इसके अलावा 15% निधियां जो अल्पसंख्यक समूहों के लाभार्थियों के लिए अलग से रखी जाएगी। राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 3% लाभार्थी अल्पसंख्यक समूहों में से हो। कवर किए गए व्यक्तियों में से 1/3 लाभार्थी महिला होनी चाहिए। यह निर्धारण केवल न्यूनतम है। यद्यपि यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दोनों में से किसी भी श्रेणी में कोई पात्र लाभार्थी नहीं है और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी इसे प्रमाणित कर देती है, तब उनके लक्ष्यों को अन्य श्रेणी के लक्ष्यों में बदला जा सकता है। विकलांगों व्यक्तियों के मामले में अलग से परियोजना प्रस्तुत की जाएगी। इस परियोजना के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र होंगे। इनकी इकाई लागत इन दिशा निर्देशों में उल्लेखनीय इकाई लागतों में से अलग होगी। विशेष समूह जो होते हैं उसकी भी एक गाइडलाइन तैयार है। यदि भी विकलांग व्यक्तियों की अवैध व्यापार से पीड़ित व्यक्तियों, सर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों, किन्नरों, पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूरों जैसे विशेष समूह तथा अन्य कमजोर समूहों के लिए अलग से कोई लक्ष्य नहीं है, फिर भी राज्यों को ऐसे विशेष समूह जो अक्सर छूट जाते हैं तो ऐसे को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष कार्यनीति बनानी पड़ती है। इन समूहों की चुनौतियों से निपटने तथा भागीदारी में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्य के स्वरूप को राज्यों द्वारा प्रस्तावित कौशल कार्य योजना में समाविष्ट किए जाने की जरूरत है। मूक बधिर, चलने में अक्षम, दृष्टिहीन व्यक्तियों के मामले में संभावित नियोजकताओं को संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता होगी ताकि उन्हें काम पर रखा जाना सुनिश्चित किया जा सके। विकलांग व्यक्तियों की नियोजन पर जुड़े प्रशिक्षण संबंधित नोट आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर वेबसाइट है, वहाँ पर उपलब्ध है नोट पूरे http://nrlmskill.in पर उपलब्ध है। यहाँ पर अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर घटक और मापदंड की बात करें तो आजीविका कौशल क्रियाकलापों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो SRLM द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप और दूसरा है PIA द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप। अब आता है SRLM द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप, उनके लागत मापदंड। इस खंड में SRLM द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची, उनके लिए लागत मापदंड के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह राज्य नोडल एजेंसी पर भी लागू होगा जिन्हें राज्य आजीविका कौशल क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में पदनामित किया गया है। कौशल में कमी का आकलन SHGA का उद्देश्य कौशल और नियोजन के लिए ग्राम पंचायत बार मांग का पता लगाना, नियोजन हेतु विभिन्न कौशल श्रेणी में प्रतिभा

अपना उम्मीदवार की उपलब्धता सुनिश्चित करना। हालांकि 10 वर्षों में किए जाने वाली जनगणना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कराए गए अध्ययनों से प्राप्त आंकड़े प्रारंभिक बिंदुओं हो सकते हैं, फिर भी SRLM को खुद या पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से ग्राम पंचायत वार विस्तार आंकलन कराने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आप इससे जुड़िएगा और आपको लगता है कि SRLM या NRLM जो मध्य प्रदेश में चलता है उनसे जुड़कर विशेष तौर पर ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। साथियों, हमें आशा है कि इसका दूसरा भाग हम अगले कार्यक्रम में जरूर आपके पास लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे। चूंकि हमारे चुनाव अभी संपन्न हुए हैं तो ऐसे में कुछ समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, किस तरीके से आपका नया सरपंच किस तरीके से काम करने में सक्षम है, क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, इसे इस पर गौर फरमाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। साथियों, अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम हमारे गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जिस कार्यक्रम हमारे गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बनाता, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी,

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक विशेष वार्तालाप को हम सुनेंगे, चूंकि अपनी बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी गिर गया है और ऐसे में हमारे किसान साथियों को क्या समस्या आ रही है उस पर भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत करेंगे। साथ साथ में हमारे किसान साथी हमारे जो उजान पठा के विजय जी हैं, उन्होंने सवाल किया था कि हमारे जो धान की खेती, उन्होंने कुछ जगह हमारे धान की खेती डूबी हुई है, तो उसमें नैनो खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। चूंकि एक्सपर्ट आज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो कल हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। लेकिन आज इस विषय जो समसामयिक चर्चा भी है कि क्या इस मौसम में क्या देखभाल, क्या किसानों को सावधानी, किस तरीके तैयारी, क्या करना चाहिए, इस विषय पर बातचीत आप करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम को। लेकिन इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और खेत खलिहान कार्यक्रम में साथियों, हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और समय समय पर मौसम आधारित जानकारी देते हैं। किसानों को किस तरीके से खेती में अपनी परिवर्तन करना चाहिए, क्या कुछ किस मौसम में कौन सी फसलों को लगाना चाहिए, कौन से बीज लगाना चाहिए, बीज उपचार की विधि, तमाम प्रकार की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी। आज हम जो आप देख रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बहुत सारे हमारे किसान साथियों की फसल भी उन्होंने लगा दी है लेकिन बहुत सारी फसल नष्ट भी हो गई है। आज हम देख रहे थे, सुन भी रहे थे कि कई शहरों में अत्यधिक बारिश होने के कारण बहुत सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। कई किसान साथियों ने अपनी फसलों को बो भी नहीं पाए हैं, लेकिन अब जायज के चूँकि अब समय आ रहा है कि हम कौन सी फसल लगाएं। अगर सब्जियों की बात करें तो कौन सी ऐसी सब्जी है जो इस मौसम में लगा सकते हैं, तो आज हम इस मौसम में कौन सी हम लोग सब्जियों को लगा सकते हैं, कौन सी ऐसी पद्धति है जिसको हम अपने क्षेत्र में अपने खेती में अपना सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर, और सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम।
0: तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि इस मौसम में चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और इस मौसम में किसान साथी भी परेशान हैं, तो कौन सी ऐसी सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं ताकि उनकी जो आजीविका है वो चल सके।
1: जी सर, जैसा कि सर ने बताया है कि इस मौसम में सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, मतलब ज़रूरत से दोगुनी तक बारिश हो गई है, जिसकी वजह से अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में लगी हुई सब्जियां और अदर फसलें भी सभी को नुकसान हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ, कई फसलें तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और कुछ फसलें जो हैं जो 70-80% तक नष्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या बाज़ार में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। अब किसान भाइयों को इसमें सुधार के लिए कुछ विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम फसलों को नए तरीके से लगा सकते हैं और उनको अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे किसान साथी सब्जियों को लगाकर उत्पादन अधिक ले सकते हैं, तो यही दिमाग में सवाल चलता है कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको इस मौसम में हम लोग लगा सकते हैं और इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरीफ सीजन जो अभी चल रहा है, जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, इसमें क्या है कि बारिश बहुत लंबी चली गई है, जिसकी वजह से फसलों की बुवाई की विधियों में थोड़ा सा परिवर्तन करके, क्योंकि जो सब्जियां हैं उनमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब हम पहले सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं फिर उसको हम दूसरी जगह मेन खेत में लगा सकते हैं।
0: सब्जियों को किस तरीके से लगा सकते हैं?
1: जी सर, सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि ऐसी फसलें जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे, इनकी जो पौध होती है वो हम पहले नर्सरी में या बोल सकते हैं हम प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर में हम तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अभी हमारे खेत तैयार नहीं है, तो फसल तैयार नर्सरी तैयार होने में भी लगभग 30 दिन का समय लगता है, तो चूंकि हमारे पास 30 दिन एक्स्ट्रा हैं, उनका हम कहीं छोटी जगह में पौध तैयार करें और खेत का अपन प्रबंधन साथ साथ में करते रहें, और जैसे ही हमको मौसम 1 या 2 दिन का खुला दिखे और जैसे ही हमारी सीडलिंग 20 दिन से ऊपर की हो जाए, मतलब यह उसकी हाइट जो होती है लंबाई 10 सेंटीमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर के बीच में हो, उस टाइम हमें रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। तो हम खेतों में अपना जिस दिन खुला समय मिले उसी दिन हम खेत में रोपाई की क्रिया को करें।
0: जी जी जी, और रोपाई की क्रिया की अगर बात करें तो हम किस तरीके से रोपाई, चूंकि एक विधि रहती है रोपाई की, तो कौन सी ऐसी विधि है, कितनी दूरी पे उसको लगाना चाहिए?
1: जी सर, जैसे हम अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग दूरी तय की गई है मीटर के हिसाब से, क्योंकि अभी क्या है कि बरसात का मौसम है तो ज्यादा बारिश की वजह से खरपतवार की भी संख्या ज्यादा बढ़ती है खेतों में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम फसलों की थोड़ा दूरी होती है, वो एक लाइन मेथड में हम करें, चूंकि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी बराबर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कृषि क्रिया करने में आसानी रहती है। जैसे टमाटर के लिए हम जनरली 60x60 पे लगाते हैं, मिर्ची पे हम 60x45 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम पौधे को रोपण कर सकते हैं, और भट्टे में भी हम 60x60 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम भट्टे को रोपण कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और इसमें अगर लगाने की बात करें तो कौन से खाद बीज अपन को लगाना चाहिए,

0: मात्रा में उसको और किस तरीके से वीर्य उपचार करना चाहिए?
1: जी सर, सर ने बहुत अच्छी बात बोली। क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे कि बरसात के सीजन में खरपतवार की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, और चूंकि हमारे जो किसान भाई है ना, उनके लिए अभी खाद की भी समस्या बहुत सारी हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको खेतों में यूरिया नहीं देना चाहिए अभी। यूरिया क्या करता है कि किसी भी फसल या खरपतवार दोनों को ही जल्दी से उनकी बढ़ोतरी कर देता है ग्रोथ में, तो उसको हम रोकने के लिए हम उसकी जगह क्या नाम है MOP और DAP का हम उपयोग कर सकते हैं, वो भी आधी मात्रा का,
0: जी
1: जिससे क्या है कि हम इसको टॉप ड्रेसिंग रूप में या बुवाई के साथ साथ बेसल डोज के रूप में आधार खरपतवार आधार उर्वरक के रूप में हम उसको पौधों के साथ में ही दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो और इस खास तौर पर बरसात के मौसम में किसान साथियों किस तरीके से देखभाल करना चाहिए?
1: जी सर बिल्कुल। अभी क्या होगा, जैसे जैसे खरपतवार ज्यादा आएंगे तो खेतों में क्या होगा, अभी मौसम कीड़े भी ज्यादा आएंगे, उसके साथ साथ बीमारियों की संख्या भी बढ़ेगी। अब चूंकि हम सबसे पहले अभी सीजन चल रहा है सोलनेसियस वेजिटेबल का, जैसे टमाटर, मिर्ची, भट्टे और भिंडी। अब इनमें होता क्या है कि सर सबसे ज्यादा फ्रूट बोरर, और अभी पत्तियों पे आपको लीफ कर्ल वायरस दिखेगा, तो ये क्या होता है जैसे मौसम ठंडा होता है तो इनका अटैक बढ़ जाता है। तो इनको रोकने के लिए हम समय समय पे या तो बीज को उपचारित करते रहना चाहिए, और यदि आपकी खेत में ट्रांसप्लांटिंग हो गई है तो हम इसके लिए समय समय पे हम M45 का स्प्रे कर सकते हैं हम।
0: बिल्कुल। और जिन किसान साथियों की सब्जी, चूंकि कुछ कुछ किसान साथियों की बची हुई है सब्जियां, तो उसमें खास तौर पर अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारी बीमारी फैल रही हैं और बहुत सारी सड़न हो रही है, मतलब सड़ रही हैं सब्जियां, तो क्या करना चाहिए उन किसान साथियों
1: बिल्कुल
0: को?
1: सर, अभी क्या है जैसे सर ने बताया कि खेतों में पानी की ज्यादा होने की वजह से सब्जियां की रूट गलन और पत्तियों में सड़न पैदा हो रही, जिसको हम पीथियम एपेंडिडर्मेटम एक बीमारी होती है फंगस के थ्रू ये फैलता है। तो हम इसको उपचार के लिए हम समय समय पे कार्बन डाइऑक्सीक्लोराइड COC जिसको हम बोलते हैं, जिसका 1% सॉल्यूशन, और साथ में ही हम मैनकोजैब या M45 का 1% सॉल्यूशन हम समय समय पर 7 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे कर दें, तो इससे तुरंत उस डिसीज को आप रोक सकते हैं या प्रबंधन कर सकते हैं हम उसका।
0: बहुत बढ़िया जानकारी। और साथ साथ में हमारे किसान साथियों को ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिन किसान साथियों ने खेती चूंकि नहीं कर पाई है, वो आगे चलकर किस तरीके से खेतों की अपनी तैयारी कर सकें?
1: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी हम रेनी सीजन या खरीफ में हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, वो भी बरसात की वजह से, तो हमारे जो आने वाला जो सीजन है वो खरीफ का होगा, क्योंकि खरीफ में सब्जियों का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम खेत को प्री प्लान तैयार करें, और हम अगेती फसलें जैसे फूल गोभी के पत्ता गोभी, और इसी के साथ साथ हम टमाटर को भी फिर से ले सकते हैं खेतों में, और साथ साथ में अभी धनिया का उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा आपको अगले सीजन में।
0: एक चीज और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि चूंकि भिंडी भी हमारे किसान साथी लगाते हैं, लगाए भी है, क्या करना चाहिए उन किसान साथियों को?
1: जी सर, जैसा कि हमने बताया था कि इसके अलावा भी भिंडी एक महत्वपूर्ण फसल है इस सीजन के लिए, क्योंकि उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं होती है, तो
0: जी
1: उसके लिए किसान भाइयों को जो बीज है वो आपको वायरल फ्री बीज अभी मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारी उसकी वैरायटियां हैं, तो हम उसको ले सकते हैं। जैसे हम बात करें अरका नाम का वैरायटी की, या पूसा भिंडी 5 की, या आपका पूसा मखमली वैरायटी की, या काशी लालमा वैरायटी। ये भिंडी में सर्वोत्तम उत्पादन के साथ साथ ये वायरस फ्री वैरायटी भी हैं, जो चूंकि भिंडी के उत्पादन को बढ़ाती हैं, और ये जल्दी से जल्दी इसमें पिकिंग आ जाती है बाकी भिंडी की वैरायटी की अपेक्षा।
0: जी। और कितने दिनों में मतलब सब्जी हमने तैयार हो जाती है?
1: भिंडी क्या है सर, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, मतलब ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अगर भिंडी को ट्रांसप्लांटिंग लगाने के तुरंत 45 दिन बाद हम इसकी पहली पिकिंग खेत में ले सकते हैं, और ये पूरी जो फसल का ड्यूरेशन है वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है आपका। तो
0: अच्छा।
1: चूंकि जो मौसम की वजह से ड्यूरेशन छोटा रह गया, उसमें आप पूरी फसल भिंडी की ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी जो हमारे खेत कल्याण कार्यक्रम में दी जा रही है, वो बेहद उनके लिए फायदेमंद भी होगी, और हमारे किसान साथियों के लिए एक नई पद्धति के रूप में अपने किसान साथी अपने खेतों में लगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, ताकि उनकी आजीविका को हम बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद किसान भाइयों।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अभी आपने डॉक्टर देवेंद्र जी को सुना, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने सब्जियों को लेकर दी है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी तैयारी कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी है जो अपने खेतों में वो लगा सकते हैं, कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम अपनी खेती को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा हमारे किसान साथियों को अधिक होगा। और हमें वैज्ञानिक पद्धति से बात करनी चाहिए और खेती भी करनी चाहिए, साथ साथ में जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर को लेकर, ड्रिप को लेकर तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसका भी हमारे किसान साथियों को लाभ लेना चाहिए। हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9219207749, या फिर चिट्ठी के माध्यम से आज आप भेजना चाहते हैं तो पत्र विहार का पता है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से भजन को। नमस्कार।

0: विधा बुंदेली
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईवेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुने थे, वो विधा को आनंद लेते हैं। यही क्रम में आज विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन मिले भैया प्रकाश कुशवाहा जी से जो गुंदरई के रहवाए हैं, और उनसे जाने के आपने जो विधाएं कहाँ से सीखी हैं और आपने का गाँव है, ये सब बातें अपन प्रकाश भैया से करें और उनसे जानकारी अपन जान बचाहें। सो यही के संगे संगे अपन प्रकाश भैया जी से मिलवे से पहला एक बढ़िया से गीत को सुनत, गीत को आनंद लेत, और फिर ये गीत के बाद अपन प्रकाश भैया से बात आगे करें। तो कहना अपन प्रकाशी भैया के गाय भय गीत को अपन सुन लेते हैं। सुनत है ये गीत को जी गा रहे हैं प्रकाश भैया जी।

0: बिल्कुल दोस्तों, अभिमान त्याग देना जो तुझ में समाया है। देखो कितना बढ़िया गीत अपन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया प्रकाश चंद कुशवाहा जी। अब आज दोस्तों प्रकाश चंद जी से आगे बात और करते हैं कि आपने कहाँ से सीखी है और कैसे जब विधाएं सीखी हैं। तो आप मिलते हैं प्रकाश भैया जी से।
1: अच्छा प्रकाश भैया, जा बात बताओ कि बात करें अपन गावे बजावे की, तो आपने जो गावो कैसे सीखो?
2: भैया हम तो छोटे रहते जब सुगावन में राम सभा होती।
1: अच्छा,
2: महीना भर में कहो एक दिन बैठ जाए, कहो महीना भर में दो बार बैठ जाए, और कहो हफ्ता में एक बार बैठ जाए।
1: अच्छा, तो राम सभा में बैठे,
2: राम सभा में जाते।
1: अच्छा, इसके अलावा आपने कहा गुरु बनाओ तो कैसे?
2: नहीं, हमने गुरु बनाओ तो भैया एक अपने रंगीला साहब हते।
1: अच्छा, रंगीला?
2: हाँ, रंगीला।
1: ये कहाँ के हते रंगीला?
2: झांसी के हते।
1: हाँ,
2: आज भी हैं।
1: अच्छा, उनका रंगीला नाम कौन नाम से जाना तूने?
2: रंगीला, रंगी राही।
1: रंगी राही।
2: हाँ, रंगीला साहब बोला तूने।
1: हाँ,
2: कुशवाहा जी हैं
1: तो उनसे आपने सीखी।
2: हाँ, उन...
1: अच्छा, उनने आपको क्या चीज बताई थी सबसे पहले?

0: साथ हैं अपने गुरु मानो तो ने?
1: अब जो मानो तो के भी बहुत अच्छा लेखा था थे।
0: अच्छा लेखा था थे वे?
1: हाँ वे लेखक है।
0: हाँ
1: तो उनकी लेखनी पे हम लोगों ने गाओ थोड़ा सा हम हाँ। लोगों को अच्छा लगा
0: हाँ।
1: और उनकी वातावरण अच्छा लगा
0: हाँ।
1: इसे हम लोग थोड़ा थोड़ा गावो सीख गए।
0: बिल्कुल सही बात है। जब आपने देखो लेखनी की बात कही तो आप जो बता पाए कि आपने उनकी सबसे पहली लेखनी कहती बात जो उन्हें लिख के आपको दी थी कि आपने गाई हो की लिखी भाई
1: देखो
0: कहा गाओ तो आपने ऐसा
1: अब देखो उन्होंने एक बहुत पहले एक चीज लिखी थी शुरुआत में
0: हाँ
1: एक बुंदेलखंड की चीज लिखी थी
0: हाँ
1: रंगीला साहब आते हुए
0: हाँ
1: और वे लिखते अपने अब भजन कीर्तन है हाँ। सब चीजें हैं
0: हाँ।
1: तो भजन भी लिखते हुए लोकगीत भी लिखते
0: हाँ।
1: अभी भी लिखते हैं
0: हाँ।
1: लेकिन अब बहुत
0: अच्छा आपने उनसे संपर्क कब से नहीं करो आपकी मुलाकात उनसे कब से नहीं हुई?
1: अभी हमारी कम से कम 5-6 साल से
0: 5-6 साल से उनसे संपर्क नहीं हो
1: पाया है।
0: अच्छा तो आपने उनकी का चीज गाई का आपको है ध्यान के कोनो चीज आपने गाई जो
1: अब कैसे अभी याद नहीं है उसमें
0: हाँ तो उनने कई चीजें ऐसी आपको
1: गाई है पार्टी भी हम लोगों की बनी है।
0: अच्छा
1: हाँ मंडल भी है।
0: अच्छा मंडल भी
1: है।
0: तो आपने कभी रेडियो बुंदेलखंड पे गाओ?
1: हाँ गाया है हमने रेडियो बुंदेलखंड पे गाया है।
0: तो जो रेडियो बुंदेलखंड पे आपने गीत गाए वे उन्हीं के लिखे गाए या फिर कछु अपने और कवियन के हैं?
1: नहीं उन्हीं के लिखे गाए हमने।
0: अच्छा उन्हीं के लिखे
1: गाए? साहब के लिखे गाए।
0: अच्छा
1: हाँ।
0: तो आपने कछु जो गाओ थे रेडियो बुंदेलखंड पे उनको हाँ। तंतुरे याद है कि हमने का चीज गाई थी?
1: हाँ हमने एक वो गाई थी तो उनका थोड़ा सा एक गजल थी
0: हाँ।
1: अभिमान त्याग देना।
0: अच्छा
1: एक गजल गाई थी हमने वो बहुत शुरुआत में गाई थी हमने आज कम से कम 6-7 साल पहले। थोड़ा सा याद है कि अभिमान त्याग देना तुझ में जो समाया है
0: हाँ।
1: और हंसा की चाल भैया कभी चल नहीं पाया है
0: हाँ।
1: हंसा की चाल कौआ कभी चल नहीं
0: चल पाया
1: है अभिमान त्याग देना तुझ में जो समाया है वो हंसा की चाल कौआ कभी चल नहीं पाया ये चीज गाई थी
0: आपने ये चीज गाई
1: हाँ।
0: अच्छा जब से आपने उतरे से गावो छोड़ो मतलब जब उतरे रिकॉर्डिंग करे आए थे उके अलावा फिर बैठे आप कहो मंडल में सभा में के?
1: नहीं हम जब से वहाँ से छोड़ा सो हम लोग बैठे हाँ। नहीं पाए हैं
0: हाँ।
1: अपने काम में बिजी हैं थे बच्चे हो गए हैं तो थोड़ा हाँ। गाओ बजाओ कम हो गया है।
0: सही है अब गृह जीवन में
1: समस्याओं से बहुत जूझना पड़ गया है
0: हाँ, सही बात है
1: क्योंकि कुछ है नहीं अपने पास में मिल जाएगा जमीन नहीं है
0: हाँ, सही बात है
1: तो अपन दो मजबूरी कर रहे हैं और पेट पाल रहे हैं।
0: सही बात है चलो बहुत अच्छी बात है। तो एक संगे संगे जो गावो बजावो है इसे मनुष्य के जो जीवन है इस पे का प्रभाव पड़ती है गाय से?
1: एक जो पुरानी इतिहास याद आते हैं कि हम पहले कैसे थे
0: हाँ।
1: आज क्या है हम लोग।
0: सही बात है
1: भाई गाने बजाने की एक जो परंपरा है
0: हाँ।
1: बुंदेली भाषाएं हैं
0: हाँ।
1: इनमें सारी भाषाओं का कीर्तन भजन होते हैं
0: हाँ।
1: तो एक जो है कि हम लोग एक इतिहास को उठा लें अपना कि कोई इतिहास ही से गाया जाता है
0: हाँ। हाँ सही बात कह रहे इतिहास से भी गाया जाता है
1: तो आज पुराना इतिहास को उठा के देखें अपन तो पुराने इतिहास में बहुत कुछ मिल रहा है।
0: बिल्कुल सही बात है
1: और अब पुराने इतिहास तक कौन जा पा रहा है?
0: सही बात
1: अब नए अपने अपने बना रहे हैं
0: नए पुराने इतिहास को तोड़ मरोड़ के
1: नए
0: तरीका से
1: नए नए तरीका से बना रहे
2: हैं
0: कट फीस में आने लगे। सही बात कह रहे हैं आप
2: न तो संगीत और गायन टूटे हुए हृदय की औषधि है
0: हाँ टूटे हुए हृदय की औषधि है। सही बात कह रहे और गावे बजावे से अपन खो जो अपनो शरीर है या फिर
2: उमंग
0: पैदा होते ही
2: शक्ति संचार पैदा हो शक्ति को संचार पैदा हो
0: शक्ति को संचार पैदा होते ही
2: गावे से।
0: चलो बहुत अच्छी बात है और जो नियुक्त के अगर अपन भक्ति में हो जाए या फिर गावे में उतर जाए तो अपनों सब दुख भूल जाते हैं
2: हाँ? पे सही बात है कि जब आदमी
0: गावे में
2: कीर्तन पे आ जाता है तो हाँ। वो सारी चीजें छोड़ देता
0: हाँ।
2: है क्योंकि उसको सतता ही उसमें दिखाई देती है
0: बिल्कुल
2: कि अच्छा और बुरा क्या है तो अपने आप नियमों का पालन करने लगता है।
0: सही बात है। तो इसके अलावा आपने और कछु सीखो कभू ऐसे जैसे क्यों पार्टी में गए हो कभू आपकी आमने सामने जवाबी कीर्तन में गए हो?
1: जवाबी वाबी ना लड़ते हैं ना अभी हाँ। आज तक कोई गाया है?
0: अच्छा आपने जवाबी में नहीं गाओ?
1: नहीं नहीं हम हाँ। नहीं गाते हैं ना हमको हमने सबसे बड़ा समस्या हमारे पास में यही रही है कि हमको इतना समय नहीं रहा है
0: हाँ।
1: और ना तो हम इतना गा पाते हैं।
0: सही है
1: थोड़ा बहुत बहुत हमारे माता दीन भैया आ जाते हैं सो हमने बोल दिया है।
0: चलो बहुत अच्छी बात। वो कहावत भी नहीं है कि अगर मन में है होलक
1: हाँ तो खंजड़ी का
0: ढोलक हाँ है क्या? सही बात है।

0: अगर मन में होलक है तो ना खंजड़ी चाने ना ढोलक चाने अपने गुनगुना लेते।
1: अभी पहले की परंपरा में सुबेरे 5 बजे जनी मन से उठ जाऊते।
0: हाँ बिल्कुल सही बात
1: कह रहे। पीसन लगती
0: हाँ
1: 5 बजे उठ के पीस रही हूँ गावियों को बड़ा शौक है तो उस टाइम में।
0: हाँ बिल्कुल सही बात।
2: भी करू रही हूँ गावी रही
1: गा रही हूँ कम से कम 10-10 किलो पिसिया पीसे रही।
0: सही बात।
1: पूरे परिवार को चक्की पे कहूँ पिसावे आटो नहीं गई।
0: सही बात कह रहे आप।
1: उनने अपने वही पिसा के गावे गावे में उन्हें 10 किलो गेहूँ पीस लो। अपने मोड़ी मोड़ को बना के खुआ दो।
0: सही बात।
1: लेकिन उन्हें जो ही शौक है तो हमें गाने हैं।
0: हाँ सुबह चकिया के बहाने गावी लेती
1: गावी लेती
0: और अपनों काम भी कर लेते हैं। सुबह परिवार के खावे को पीस लेती
2: बीमार नहीं होती
0: और गा लेते हैं।
2: सही बात है। बीमार होने
1: हम क्या कह रहे हैं बिल्कुल नहीं बीमार। आज देखो तुम तो 100-100 साल की बाई आज भी बैठी है।
0: हाँ सही कह रहे हैं। सही कह रहे
1: हैं बैठी
0: है बिल्कुल
1: गा रही है खूब।
0: अच्छा प्रकाश भैया आपसे एक बात और जानना चाहे कि आपकी माताजी को कभी आपने देखो गाउत चकिया पीसर?
1: नहीं हमारी माताजी ने खूब गाया है,
0: है?
1: आप तो बुढ़ी हो गई खैर।
0: नहीं आप तो बुढ़ी हो गई लेकिन जब भी अपने परिवार चला उठते अपने बाली बच्चन हो पाउत पिया उठते उस समय पे तो आपने देखो ही है कि माताजी पीस रहे गा रहे हैं।
1: खूब गाया उन्होंने खूब उन्हें चक्की चलाई वो चकिया चलाई।
0: हाँ और आपकी शादी क्या साल की हते जब हो गई थी?
1: हमारी शादी करीब 30-32 साल की लगभग में गई भैया।
0: तो आपकी मैसेज को क्या नाम है?
1: हमारी मैसेज का नाम है जानकी देवी कुशवाहा।
0: जानकी देवी कुशवाहा।
1: हाँ।
0: अच्छा कभी जानकी देवी ने पीसो?
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं मिलो
0: उन्हें नहीं मिलो। अच्छा जब चकियां नहीं हथ बची थी पीसवे के लाके या फिर जे पीस के नहीं जानती
1: नहीं,
0: या
1: नहीं,
0: फिर
1: चकियां तो आज भी रखी।
0: चकियां तो आज भी रखी
1: लेकिन
0: सुख सुविधाएं मिल गई इन्हें।
2: जब पहला चक्की नहीं रखती थी गाँव में क्यों चक्की नहीं होती चक्की
0: अब तो चक्की हर मोहल्ला में है हर जगह है।
1: हर जगह चक्की हो गई है
0: और कछु ट्रैक्टर भाई चक्की चल गई घर जाके पीस
1: जाकर पीस रही है भी।
0: तो आपकी ने एक शौक ना गावे को शौक रहो
1: नहीं,
0: ना पीस भी
1: बिल्कुल नहीं।
0: जब जिनने पीसो ही नहीं है तो गाँव कहाँ पे भी
1: बात तो मई है ना पूरी।
0: हाँ
1: जब गाने का शौक हो जब तो वो पीसे।
0: सही बात है
1: गाने का शौक नहीं है।
0: सही बात
1: सब सुविधाएं दे रही
0: है। सब सुविधाएं हो गई। चलो बहुत अच्छी बात प्रकाश भैया आपने जब बताई और इनने कहा गाँव नहीं
1: भैया इनको नहीं मिला मौका।
0: चलो
1: ये गाने का मौका भी हर किसी को थोड़ी मिलता है।
0: सही बात है। सही बात
1: जिसके अंदर एक लगन होती है कि हमको ये काम करना है
0: सही बात
1: कोई चीज सीखना है तब कोई उसको सीख पाता है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो फिर और इन्हें वो भी नहीं मिला सीख लाने अगर भी चकियां चलत होती तो इन्हें परवस पीसने आओ तो और गाँव नहीं आते।
1: अनुभव तो सब है लेकिन अब आज का है कि आदमी शर्म अपनी शर्म के मारे जाता।
0: सही बात कह रहे आप
1: करन नहीं चाहू। आदमी को सब है।
0: सही बात कह रहे
1: सब करन चाहू। लेकिन अब शर्म लगत हर आदमी को।
2: अगर चक्की चले तो
1: अगर गा भी रही वे तो कई वो सुन ना ले। अरे गा सुन नहीं ले।
0: सही बात है।
1: गाने हैं तो गावे में कछु सुन ले की
0: बात ही नहीं है। कोई बात ही नहीं है। बूढ़ी पुरानी अपनी माता है तो देखो 4 बजे रात से
1: हमारी माता जी आज कम से कम 105 साल की हो गई है।
0: अच्छा
1: और आज भी उनसे हम कहें तो भैया तुमसे 10 बेर घुमा दे।
0: सही बात कह रहे आप। सही बात कह रहे हैं आपके भी अबे भी गा सके
1: अबे गा दे भी।
0: चलो बहुत अच्छी बात है प्रकाश भैया आपने देखो इतनों कीमती समय निकाल के दो खिलाने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
1: भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको भी।
3: देखो दोस्तों जयते भैया प्रकाश चंद्र कुशवाहा जी और इनसे अपन ने बातचीत या करी है यही बातन की संगे संगे आप और कह रहे हो कि माता दिन भैया ब्लैक टाइम से प्रकाश भैया जी से बातें कर रहे हैं मनोरंजन की तरफ को ध्यान नहीं दे रहे। सो आओ मनोरंजन के लाने एक बढ़िया से गीत को सुनत गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में और सुनते रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। आओ सुन लेते हैं एक और बढ़िया से गीत खोल लेते हैं गीत को आनंद।

0: अंगना में बैठी चार गुनिया बता दो सखी अब कैसो करेंगे। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रही थी पिस्ताजी। अब पिस्ताजी के गीत के बाद अपन को हम बता देवे कि आज के कार्यक्रम विधा बुंदेली से आपके दोस्त माता दिन भैया को जावे को समय शुभ हो रहा है। सो अपने दोस्त माता दिन भैया को दो कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी फिर यह मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।
1: विधा बुंदेली
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास।

है प्यारी, देखी कुंवर किशोरी, देखी कुंवर किशोरी।

कलियां सबरी पंख पसारे, कलियां सबरी पंख पसारे, ले तन दस मुस क्या गई चबगिया, ले तन दस

श्रोताओं, इस मल्हार में जब कंस अपनी बहन देवकी और वसुदेव को जेल के अंदर डाल देता है हथकड़ी और बेड़ी लगाकर, तो आठवें बच्चे के रूप में कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं। तो कवि ने क्या लिखा है, आइए सुनाते हैं इस मल्हार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे जी आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। तो दोस्तों आप सब जन को जी आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों आज की सभा इतनी संपन्न होत है, सो चलत चलत आप उन्हें लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आप उन्हें फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सकें। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतनी समापन होवे को समय हो गयो है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।

बारी हमारे गांव की। नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबिरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम बारी हमारे गांव की। जी हाँ दोस्तों, बारी हमारे गांव की कार्यक्रम में आज चलें अपन गुंदरई गांव की ओर। जी हाँ दोस्तों, गुंदरई गांव ओरछा नगर पंचायत की वार्ड नंबर 13 है, जिते अपन चलें और उतः की सैर करें और उतः मिलें अपन भैया प्रकाश कुशवाहा जी से और उनसे जाने।

0: दोस्तों जो कितनो बढ़िया गीत अपन सब जनन ने सुनो, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया अर्जुन सिंह जी। अब दोस्तों अर्जुन भैया जी के ये गीत के बाद आओ अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में मिलते हैं अपन भैया प्रकाश कुशवाहा जी से। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।
1: अच्छा भैया पहला तो आप अपना नाम पता बताओ।
2: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माता दीन कुशवाहा जी आपको। और मैं प्रकाश चंद कुशवाहा गुंदरई गांव वार्ड नंबर 13 का हूँ, मूल निवासी ओरछा।
1: चलो बहुत अच्छी बात है प्रकाश जी। आज हम आपसे जो जानबो चाहें कि आपकी जो वार्ड नंबर 13 है,
2: हाँ,
1: में सबसे अच्छी बात का है आपके लिए?
2: हमारे सबसे अच्छी बात ये है भैया कि जो गांव तक जो चुनाव हो गए हैं,
1: हाँ,
2: और हमारे गांव में पार्षद बन गए हैं,
1: हाँ।
2: पार्षद की यही है सबसे बड़ी, गांव में एक विकास की धारा बह रही है,
1: हाँ।
2: और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं।
1: अच्छा जैसे विकास की आपने बात करी तो आपके गांव में काय को विकास है?
2: अब विकास तो अभी वैसे तो बिजली है।
1: अच्छा बिजली कितने कैसी का आपका?
2: बिजली तो अभी हाल में जो है कि बहुत मिल रही है हम लोग।
1: अच्छा बिजली अच्छी मिल रही
2: है? हाँ बिजली तो अभी,
1: चलो बिजली की बात,
2: बिजली तो से तो हम लोग बहुत खुश हैं। अभी
1: के संगे बात करें अपन पानी की,
2: भैया पानी की समस्या बहुत खराब है।
1: अच्छा, पानी के लाने का व्यवस्था है आपके?
2: हमारे तो भैया कुआ है तो उनमें तो विशेष पानी है नहीं है।
1: अच्छा
2: वर्षा भई है लेकिन वो एकाएक वर्षा भई,
1: हाँ।
2: वो एकाएक वो बह गया पानी,
1: हाँ, सही बात,
2: लेकिन कुएं में नहीं आ पा उतना पानी।
1: अच्छा तो जैसे अपन जो पानी की बात कर रहे तो अपनो जो पूरा मोहल्ला है बाढ़पुर जो 13 नंबर है सब कुआ पे जाते होंगे?
2: सब कुएं पे काम कर रहे हैं।
1: हेडपंप में नहीं लगे आपके?
2: हेडपंप लगे हैं, एक दो लगे सो उनको कोई देखे भी नहीं आऊ खराब हो जाऊ।
1: अच्छा
2: हाँ
1: ओहो,
2: बहुत परेशानी है जातो के वास्तविक में कोई ध्यान ही नहीं देती चीजें पे। हेडपंप लगे हैं,
1: हाँ।
2: लेकिन उनकी कोई सर्विस नहीं होती कम हुए जब।
1: अच्छा।
2: महीने का डरे हैं वो खराब।
1: तो जा देखो कितनी बड़ी समस्या है आपके लिए। तो ई के लाने आप का के वो चाहे के जैसे हमारे तो समस्या है तो जिनके ते हैंडपंप लगे बे हेडपंप पर हो कौन तरीका से चलाने के खराब ना हो जावे या फिर लापरवाही से ना चला?
2: देखो कछु लापरवाही गाँव की जनता कर दे,
1: हाँ,
2: के भाई ढंग से चलाऊ तो नहीं,
1: हाँ,
2: सो बिगड़ जाऊ खराब हो जाऊ,
1: हाँ।
2: अगर भाई आराम से चलाए,
1: हाँ।
2: अब कछु कर्मचारी करें के जब ने कितरा उनसे तो बने आने नहीं जब तक कहे के जब तक बड़ा ऊपर को अधिकारी ना कहे उनसे तो जब भी आए।
1: चलो तो एक तो ज्यादा समस्या है आपके,
2: हाँ, पानी की समस्या।
1: पानी की समस्या, हाँ। देखो सबसे मेन बात हो पानी,
2: पानी की समस्या खराब है।
1: तो जब बात हो गई अपनी पानी की, अब एक के संगे संगे अपन बात करें शौचालय की।
2: शौचालय
1: तो शौचालय बने का आपने?
2: नहीं शौचालय तो नहीं बने हैं,
1: हाँ।
2: कछु नगर पंचायत ने बनाए,
1: हाँ।
2: सुबह आज जो कहते हैं डरे।
1: अच्छा
2: उन्हें काउ ने यूज ही नहीं कर पाओ।
1: यूज काहे नहीं करो? मतलब पूरे नहीं बने बे या फिर पानी नहीं?
2: भैया वे पूरे नहीं बन पाए हैं,
1: हाँ।
2: और वे जो सोकन गड्ढा दाए हैं छोटे छोटे से,
1: हाँ।
2: गड्ढा खोद के उनने जनता ने भाई मान नहीं करो।
1: अच्छा मतलब
2: जो अच्छो नंजा हमारे साथ जो अच्छो नंजा
1: तो इसे यूज नहीं कर रहे,
2: इसे यूज नहीं कर रहे और जिनके बन गए सुबह भी नहीं कर रहे यूज।
1: अच्छा बे काय नहीं कर रहे जिनके बन गए?
2: अब बेकित वो छोटो गड्ढा है वहाँ में पानी ही भर जाऊ दिनों के हम रोजी ने वो दोबारा नहीं कर रहा हूँ पानी दोबारा। नाली बनी नहीं?
1: नाली बनी नहीं?
2: नहीं नहीं नाली नहीं बनी।
1: अच्छा तो नाली पूरे मोहल्ला में नहीं बनी या फिर आप ही?
2: कहूँ नहीं हो रही बिल्कुल, नाली क्यों बनी ही नहीं?
1: अच्छा नाली क्यों बनी ही नहीं?
2: नहीं बिल्कुल नहीं, द्वारा पानी बह रहा है, समस्या यही सबसे खराब है।
1: ले देखो कितनी बड़ी समस्या है। और जो आप जानत के जितने पानी रुकत रहते पानी भरत भरत सड़त सड़त
2: बहुत बीमारियां भी बनत बास
1: है,
2: बहुत
1: प्रकार

0: आगे समस्या बहुत नाली नहीं है, नाली नहीं है।
1: अच्छा बोटिंग कितने हुई है कम से कम आपके मोहल्ला की?
0: हमारे वार्ड की 13 नंबर वार्ड की है, 600 बोट है।
1: 600 बोट,
0: हाँ
1: बताओ इतने लोगों को जब 600 तो ये बोट बोट आए
0: हाँ
1: और बाकी जो जनसंख्या
0: और भी है ज्यादा है,
1: ज्यादा हुई है वो तो।
0: हाँ?
1: तो ये सब इतनी परेशानी भोग रहे हैं,
0: सब परेशानी भोग रहे हैं और सब इन चीजों से परेशान है।
1: चलो बहुत देखो जा तो समस्या बहुत ही खराब है। अब एक संगे संगे अपन के जो साफ सफाई की बात करें,
0: हाँ
1: तो साफ सफाई में जो नगर पंचायत के कर्मचारी हैं भैया उसका,
0: हाँ 8 दिन में एक दिन जरूर आऊ।
1: अच्छा 8 दिन में,
0: 8 दिन में एक दिन चक्कर लगा के अपने झाड़ू मारू लगा के चले जाएंगे, जितना लगाने होता लगा जाएंगे।
1: हाँ।
0: और बकाया देखो तो दोबारे के आगे ढेर लगे खूब, अबे ट्रोलियां भर जाए ऐसे ढेर लगे है, इतनी गंदगी पड़ी है वे रोड पे। हाँ
1: तो देखो आपकी जो वार्ड नंबर 13 है आपके तो बहुत ही समस्या गंभीर है,
0: बहुत गंभीर है भैया ये समस्या, कोई सुनता भी नहीं है। उसे कहो उन्होंने नेता से कहो तो वो कहते के तुमने हमें वोट नहीं दे।
1: अच्छा तो
0: इसे हमें तुम्हारे से काम नहीं करूंगा।
1: ओहो अच्छा आप कहूँ नगर पंचायत में आपकी शिकायत करी कहूँ ऐसी काउ से कही हो के भैया हमारे तो ज्यादा समस्या है गंदगी फैली है।
0: अपने पार्षद से कर सके शिकायत, पार्षद से कर रोजी ना करत हम तो।
1: अच्छा
0: रोजी ना हमारे सामने से पार्षद जी ने करत हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं तो उनसे रोजी ना कद हम तो।
1: हाँ।
0: कि भैया जी करवा दो उसमें कहते यार हमारी कोई सुनत नहीं होते।
1: अच्छा पार्षद भी कहते हैं हमारी नहीं सुनना तो हम।
0: हाँ बोले हमारी हम सुनते ही नहीं को।
1: देखो समस्या बहुत बड़ी है। अच्छा अब एक के संगे जा देखो पानी की हो गई साफ सफाई की हो गई, अब अपन बात करें स्कूल की, काहे के स्कूल होगा बहुत जरूरी है।
0: हाँ,
1: तो
0: हाँ,
1: बच्चे को भविष्य,
0: बिल्कुल सही सही बात है, सही बात है,
1: बच्चा देश के भविष्य को बना,
0: बिल्कुल सही बात है।
1: तो इनके पढ़वे लिखवे की क्या व्यवस्था है आपके गांव में?
0: हमारे 13 नंबर वार्ड में स्कूल तो है ही नहीं है भैया।
1: अच्छा
0: कोई अभी तक स्कूल नहीं है।
1: हाँ।
0: और हम लोग 12 नंबर वार्ड में स्कूल बना हुआ है।
1: हाँ।
0: उसमें हमारे गांव के बच्चे सारे पढ़ने जाते हैं।
1: वार्ड नंबर,
0: हाँ 12 नंबर वार्ड,
1: 12
0: नंबर वार्ड।
1: आपकी वार्ड से वो कितने दूर पे है?
0: कम से कम हमारे 1 किलोमीटर का अंतर है।
1: 1 किलोमीटर की दूरी,
0: कहीं 1 किलोमीटर कहीं 2 किलो कहीं 3 किलोमीटर में, क्योंकि हमारे 12-13 नंबर वार्ड के कम से कम 6-7 मोहल्ले हैं।
1: अच्छा
0: एक मोहल्ला नहीं है कि एक मोहल्ला है, एक एक मोहल्ले में कम से कम 100-150 आदमी बसा हुआ है। हाँ
1: तो सब में यही समस्या
0: है, जी सब हर गांव में यही समस्या है।
1: अच्छा चलो तो देखो अब ई किला ने आपको क्या विचार है कि ये समस्याएं कैसे दूर हुई है, क्या करो जाए?
0: अब ई किला ने जो समस्याएं दूर हुई है कि अपन को गाँव के लोगों को तरह जागरूकता होने पड़े,
1: बिल्कुल
0: कि हमें अपनी सफाई पे ध्यान करने।
1: हाँ।
0: का चीज की जरूरत है हमें।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल
0: अपन को स्वयं ध्यान करने पड़े, नगर पंचायत भी अपन को बताने पड़े।
1: हाँ बिल्कुल,
0: कि भैया हमारे यहाँ जी है अपन को कहने तो पड़े ही।
1: सही बात है। तो सबसे पहला आप कौन सी चीज पे ध्यान देबो चाहे जैसे इतनी समस्याएं हैं?
0: सबसे पहली हमारी एक ही समस्या है कि पानी की जो व्यवस्था खराब है तो या तो नगर पंचायत से टैंक बढ़ते हैं।
1: हाँ।
0: तो टैंक बटवाए जाए।
1: हाँ।
0: या फिर कोई नल की व्यवस्था भी हो सकती है,
1: बिल्कुल सही।
0: जैसे गांव में हमारे में कुआ है।
1: हाँ।
0: कुआ में मोटर रखवा के पाइपलाइन भी डल सकती है।
1: पाइपलाइन डल सकती है या फिर टंकी बन जाए,
0: टंकी बन जाए
1: तो जिससे सबके पूरे गांव भर में पानी हो जाए।
0: सबसे समस्या खराब है पानी की।
1: पानी की।
0: हाँ।

0: बिल्कुल बिल्कुल, देखो पहला तो लिस्ट बनाओ कि हमारे पास समस्याएं कितनी हैं।
1: हाँ
0: ठीक,
1: बिल्कुल सही बात है।
0: समस्या के समाधान सोचो कि कौन समस्या को समाधान पहले करने।
1: सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
0: बैठे जब ये बातें हो
1: पाए। नहीं नहीं बिल्कुल भैया, हम आपको एक बार फिर बुलाए हैं।
0: बिल्कुल बहुत अच्छी,
1: और बुला है सो आपको समस्याएं उनका पूरा सामने है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कौन कौन सी समस्याएं।
1: पार्षद को भी हम अपने को बुला ले हैं।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: चेयरमैन साहब को भी बुला ले हैं।
0: बिल्कुल,
1: सबको बुला के और एक सामने मीटिंग करवा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कि भाई हमारे गांव की जो परेशानी है।
0: तो उन पे प्रकाश डालो जे, फिर कौन सी केला जरूरी निपटावो है, कौन सी बाद में चल जाए, तो ये सब बातें बाद में हो सकते हैं।
1: नहीं बिल्कुल हो जाए, काहे नहीं होंगे भैया।
0: तो प्रकाश भैया आपने तो कीमती समय निकाल के हमें दवाई खिलाने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया।
1: नमस्कार भैया।
2: देखो दोस्तों, जब कितनी बढ़िया बातचीत अपन सब जनन ने सुनी है, और जब बातचीत अपन कर रहे थे भैया प्रकाश कुशवाहा जी से जो गुंदरई के रेविवाय हैं। अब दोस्तों एक क्रम में हम आप सब जनन से भी कहबो चाहें कि अगर आप भी अपने गांव की बात करबो चाहें, बतावो चाहें कि हमारे गांव में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कौन कौन सी असुविधाएं हैं, ये सब बातें अपन कर सकत अपने ही कार्यक्रम बारी हमारे गाँव की में। सो दोस्तों आप सब जने जरूर अपने गांव की बात रखें ई कार्यक्रम में। दोस्तों अगर आपके पास हमारा फोन नंबर नहीं आ, तो आप हमारे फोन नंबर को लिख लें और ई नंबर पे आप हमें बता सकते कि माता जी भैया जी आप हमारे गांव में आओ और हम भी अपने गांव की ऐसी बातें बतावो चाहें। सो दोस्तों लिख लो हमारे फोन नंबर को। सो हमारा फोन नंबर है 94251417126। सो जो नंबर लगा के आप हमसे सीधी बात कर सकत। अब दोस्तों यही क्रम में आप और कह रहे हो कि माता दीन भैया बहुत टाइम से बातन में लगे हैं और मनोरंजन की ओर कोनो ध्यान नहीं कर रहे। सो दोस्तों हमें आपके मनोरंजन को ख्याल है और मनोरंजन के लाने आओ सुनते हैं अपने एक बढ़िया से गीत को और गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसी बनी रहो अपने दोस्त माता दीन के संग में।

0: घर पे सुदामा गरीब आ गया है। देखो दोस्तों कितना प्यारा जो गीत अपन सब जन ने सुनो, ये गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे बाबूलाल जी। अब दोस्तों एक के संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम बारी हमारे गांव से आपके दोस्त माता दीन जी को जाबे को समय हो गए है। सो अपने दोस्त को तो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार। बारी हमारे गांव की
1: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम शुभ कल में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोता साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि शुभ

कल कार्यक्रम विगत कई वर्षों से हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, नए नए कार्यक्रम इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं। साथ में हम प्रयास करते हैं कि हमारे श्रोता साथियों को वो छोटी से छोटी जानकारी आप लोगों तक उपलब्ध कराई जाए, पहुंचाई जाए कार्यक्रम के माध्यम से, जो आपको लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और हम देख भी रहे हैं। हम कार्यक्रम को जब बनाते हैं तो सारे बिंदुओं को हम कोशिश करते हैं कि कवर करें। हमें लगता है कि अब चूंकि हम इस कार्यक्रम को बनाते बनाते अब हमें ऐसे विषय ढूंढना होगा, ऐसे विषय के लिए चयन करना होगा जो आपके लिए एकदम नए हो। हम कार्यक्रम के माध्यम से कई दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि शुभकल कार्यक्रम में आजीविका से जुड़ी बातचीत करते हैं, हम शुभकल कार्यक्रम में पर्यावरण से जुड़ी बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है श्रोता साथियों कि अब शुभकल कार्यक्रम में बदलाव की जरूरत है, अब उस शुभकल कार्यक्रम में कुछ ऐसा जाना चाहिए जो दिल को छूने वाला हो और आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो? तो इसके लिए साथियों आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि जब आप हमें बहुमूल्य सुझाव देंगे उस पर हम काम करेंगे, उस पर हम कार्यक्रम को बनाएंगे, फिर उस कार्यक्रम को आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी साथियों रहती है। तो हम कोशिश करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले अब समय में हम इस कार्यक्रम का बदलाव करेंगे और इस कार्यक्रम में बेहद जानकारी जो आपको हम उपलब्ध कराते हैं उससे और अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध कराएं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में चूंकि बहुत दिनों से चल रहा है कुछ नया करने के लिए, हम वही पर्यावरण पर बातचीत करते हैं, जलवायु पर बातचीत करते हैं, आजीविका पर बातचीत करते हैं, लेकिन साथियों आज हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि हमारे श्रोता साथी, चूंकि हमारे साथी खेती किसानी करते हैं, खेती किसानी में चूंकि अगर पर्यावरण को जोड़ा जाए तो एक अलग पहलू हो जाता है। यदि खेती किसानी में हम दूसरी अन्य चीजों को जोड़ा जाए जैसे आजीविका को जोड़ा जाए तो वो अलग बिंदु हो जाता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में चूंकि हमने पहले शुभकल कार्यक्रम जब स्टार्ट किया था, शुरुआत इसकी की थी, तब हमने एक कैंपेन किया था कौन बनेगा शुभकल लीडर, तो उसमें हमने जो पांच गतिविधियां इस कार्यक्रम के माध्यम से ली थी वो थी किचन गार्डन, अमृत मिट्टी बनाना, केचुआ खाद बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी। तो ये सारे विषय जो पांच विषय थे उस विषय पर हम पुनः जाना चाहेंगे, क्योंकि अब वो समय है कि हम अपने श्रोता साथियों को वो जानकारी उपलब्ध कराएं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में साथियों आज हम बात करेंगे अमृत मिट्टी बनाने की। अमृत मिट्टी बनाने पर हमारे बैरू भौजी का जो किरदार है, जो आपको बहुत लुहावना लगता था, बहुत बेशक पसंद था हमारे श्रोता साथियों को, तो आज उनका कैरेक्टर भी हम इस कार्यक्रम में लेकर आएंगे। साथ में हमारे जो विषय विशेषज्ञ से जुड़े उनसे हम अमृत मिट्टी बनाने सीखेंगे, जानेंगे, क्योंकि बहुत ही सरल है अमृत मिट्टी बनाना, और लेकिन इस जलवायु को देखते हुए, इस खेती को देखते हुए अगर हम बात करते हैं जैविक खेती की, तो उस जैविक खेती में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अमृत मिट्टी, क्योंकि नया है ये खाद बनाना। हमने मटका खाद सुना होगा, केंचुआ खाद सुना होगा, गोबर की खाद सुना होगा, तो इसका कॉम्बिनेशन जिसे कहा जाता है कि हम एक जगह ऐसी जो फालतू चीजें जैसे पत्ता का इस्तेमाल हम करते हैं, फेंक देते हैं उसको या तो जला देते हैं, गौमूत्र इसमें लगता है, गोबर लगता है इसमें, तो तमाम प्रकार की जो चीजें हैं उस अमृत मिट्टी बनाने में लगती है। तो आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में साथियों अमृत मिट्टी बनाना आपको बताएंगे, बैरोभौजी का करेक्टर आपको सुनवाएंगे, लेकिन साथियों बातचीत हमारी काफी हो चुकी है, एक गीत के साथ आपको मनोरंजन कराते हैं। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से लोकगीत।

पानी फैला प्रदूषण बीमारी ध्यान से समझो नर और नारी सबके हित में बात मुचारी दर्द को साचो झूठो।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम सुपकल में। और साथियों, अभी आपने नारायण दास दर्द और उनके साथियों की आवाज में इस प्यारे से लोकगीत को सुना, पर्यावरण से जुड़ा लोकगीत है। आप कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और भैरव भौजी का किरदार जो हमारी निभाती हैं, उनसे हम अमृत मिट्टी बनाना, चूंकि उनने भी बताया है, तो आइए इस नाटकीय रूप को हम सुनते हैं।
1: अरे लालाजू, आज तो बगल में रेडियो रखे हो और जो, लेकिन का कर रहे हो तुम?
2: अरे भौजी, कर तो तुम रही, तुम बताओ का कर रही? आज तो बड़ी गजब ढा रही तुम तो।
1: अरे लालाजू, का जा रहे थे ना, एक महीने की बजा रहे हुए हूँ, लेकिन तुम का कर रहे?
2: अरे भौजी, मोई ना सुनो, अब वो हुए कितने यहाँ के आधी अधूरी जानकारी ले लो तो कितम के नीरत, ना घर के ना घाट के।
1: का कह रहे लालाजू, आधी माधी कर लेते सो वही कर रहे, का कर रहे?
2: अरे भौजी, ध्यान से सुन, जा कह रहा है कि अगर अपन को आधी जानकारी हो गए कछु भी चीज की, कछु भी काम की, तो ना घर के रहे ना घाट के रहे।
1: सो बास का कह रहा लाला जी, घर को पता, घर को ना घाट को?
2: अरे बा काना दूसरी, हम जा दूसरी कह रहे है कि अब जो काम कर रहा है, जो हम वो बना रहे, जो हमने एक दिन सुनी थी का अमृत मिट्टी।
1: अमृत मिट्टी के बारे में सुनो तो।
2: हाउ सो अब हमने बात सुनी तो है नी, अब लेकिन ध्यान से नहीं सुन पाई, सो अब लगे हैंगे जी सब बनावे हम।
1: ध्यान से काहे नहीं सुनी भाई, पूरी काहे नहीं सुनी लालाजू?
2: अब बस भौजी, तनक एक संग दूसरा काम करत जा रहे थे, वो एक जने हमें बता रहे थे, भी बड़ी बता तो ये नोनी तरह से रहे थे, लेकिन हाँ। हमने ध्यान से नहीं सुन पाई, वाह हमारी गलती हो गई अब।
1: अरे लालाजू, मैं जानत होंगी तुम्हें, तुम मन के तुम और लगो हो जी, अब तुम्हें काहे को मत सुनाई दे है ढंग से, अब तुम सुन रहे थे तो उन्हें बज सुन लेते होते, उनमें मन ना लगाते।
2: अरे भौजी, तुम कहवे को मतलब का है, कुन में उतर के तुम मोड़ ने देख रहे हो?
1: मैं तो जही कह रही, तुम जो ही कर रहे हो और बा में ध्यान कम दे रहे हो, अगर कोनो जानकारी सुनना है तो ढंग से सुन लो।
2: अब भौजी नहीं सुन भाई अब, लेकिन मैंने कही चलो जैसी सुनी तो बना ही ली।
1: हाओ ये राम भाई, तुम्हें तो खूब बात है, अब बना लो।
2: अब भाई तो कर रहे भौजी, सब तेवर बीच में आ गई।
1: अच्छा तो अभी तक का करो तुमने?
2: अब जी सब सामान तो सट्टा बटोर लो, खट्टो तो कर ही लो।
1: लाला तुम, तो तुम्हें देख के हंसी आ रही।
2: अब का भौजी, जब काम करे तो भड़ना जाए, ऐसे तुम्हें कौन सी हंसी आ रही?
1: ऐसे काम को देख भड़ गए जैसे बन जाने का पूरी अमृत मिट्टी तुम्हारी बना रहे हूँ।
2: अरे भौजी, जब अपन पूरी तरह से, जब पूरी तरह मिट्टी में मिल के काम करें तो अच्छी तरह से बने। हमने सुनो कि कोनो चीज में अच्छी तरह से घुल मिल के काम करो तो अच्छा हो जाता।
1: का कह रहे लालाजू, दूध में मिला मिला के पियो सो अच्छा हो जाता?
2: हाँ, कोनो काम अगर अपन अच्छा घुल मिल के करें भाई, रुच से।

0: तो हमने के इतना भेड़ जाओ तो कौन सी दिक्कत है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कह रहा है कि वो मैं भेड़ जाओ तो मजे ने एक तरह किया मैं और मुंह पोत दो मैं तुम तो ने एक और अच्छे लगो सुगाटा जैसी।
0: तो फिर भौजी दिखाए कैसे सुगाटा से तो इन बन जे।
1: कहा कह रहे लाला जू चाटा खल जे मैं देखा तो मैं ये देखो गई तुम्हारी अभी।
0: अरे भौजी कहीं तो कह रहे कि सुगाटा से बन जे तो मैंने कही सुगाटा से बन जे से तो दिखाए कैसे चाटा को मार रहा तुम्हें।
1: अच्छा तो मैंने एक तेज भूल करे तुम तो वही की वही घुसरू घुसरू कर ली।
0: अब तो सुना तो है इतनी तेज तो कहते हैं मैं कौन बिहारी हूँ।
1: कहा कह रहे लाला जू
0: कछुनी जबकि ऐसे की कह रहे थे कि बता दो करूँ काम है समझ में नहीं आ रही।
1: अरे लाला जू तुम चलो मैं ही बता दे थोंगी मुझे तो मालूम है मैंने खुद सुनो तो।
0: अब लेकिन तू भौजी जाने तो सज के तो ठाड़ी है।
1: कहा कह रहे लाला जू तू जाने हैं।
0: हाँ उतने तो ठाड़ी सजी
1: तो अब सजी ठाड़ी लेकिन अब मैं तुम्हें बताए दे रही होंगी पहले अब तुम अब लगे तो होंगे काम कर भी तो मैंने की अब तुम्हें बताए दे तू।
0: अरे मैं सब जाना आई जी मुई ने सज बज के बातें मारे झूठी झूठी।
1: कहा कह रहे लाला जी झूठी कह रहे।
0: अरे भाजी कछुनी अब बता देते हैं तो।
1: हाँ तो मैं बताए दे थूंगी अब मुझे जाने होते अब मैं टेम हो रहा हूँ तो देखो अमृत मिट्टी तुम देखो जो बनाते हैं लही लेकिन टी के लाने तीन चीजें जैसे एक तो अपन अमृत मिट्टी जो बना रहे लेकिन ई के पहले अपन को अमृत जल बनाने पर रखे।
0: अच्छा अमृत जल बनाने आउट।
1: हाँ यानी कि अमृत पानी बनाने आउट। वो कैसे बना थे।
0: हाँ
1: वो जो गैया को गोबर हो बाय ले लो
2: ठीक है
1: और काले लो गोबर ले लो है और एक जो सड़ो गड़ो फल हो तो अपनो चाहे केला हो चाहे वो अपन जो मतलब नहीं खा रहे सीधी बात।
0: अच्छा
1: है वो ले लो सुबह एक डिब्बा में घोल के और रख दो कै दिना के लाने तीन दिना के लाने ठीक है लाला जू। आ रही समझ में।
0: बिल्कुल बिल्कुल नोनी तरह से आ जा रही।
1: कहा कह रहे लाला जू ने कम तरीका से आ रही।
0: अरे बात पूरी तरीका से आ रही।
1: हाँ हाँ भाई तो मैं कह रही सुबह एक डिब्बा में अपन रख दे तीन दिना के लाने लेकिन अपनी जो अपन ऐसे महरी टारत एक चमचा कहूँ ऐसो घुमा दे कहूँ ऐसो घुमा दे उल्टो सीधो मतलब तो बस चमचा को ऐसे घुमाने
0: कबो जी कबो हड़िया को मुँह नीचे करने के ऊपर करने।
1: अरे लाला जू बस चमचा से अपन महरी बस जब अपन बेसन बस जालत के वहाँ में गुठला ना पड़ जाए सुबह चमचा को ऐसो घुमा और फिर ऐसो घुमा।
0: अच्छा ईलंग और उलंग।
1: हाँ सुबह एक ही मिल जाए तीन दिना में फिर उसके बाद लाला जू हो तुम्हें जो करने के परते बनाने वो बन गो अपनो जल जल बन गो। अब अमृत वो बनाने अपन को अमृत मिट्टी ऊ के लाने तुम्हें जो करने पड़े ये एक खेत में जितने तुम्हें बनाने उतने में तुम पहले मट्टी बिछाओ जैसे इतनी सी परत में मतलब मट्टी बिछा लो पट्टिया मान लो एक बनाने तो अपन पट्टिया जितनी मट्टी बिछा ले ऊ के ऊपर गोबर बिछा दे फिर ऊ के ऊपर पानी लाकर अमृत पानी लगातार के छट जाने ठीक है लाला जी।
0: अच्छा
1: हाओ और फिर ऊ के ऊपर अपन फिर से मट्टी बिछा दे
0: फिर से मट्टी बिछा।
1: हाँ मट्टी बिछावे के बाद फिर अगर कूड़ा कचरा है अपनी गंजा भैसन को तो ऊपर बिछा दो बाकी आ रही।
0: हाँ आ रही है।
1: फिर ऊ के ऊपर फिर मट्टी बिछा दू है और फिर जो अपन ने बीज लेने पर 10 प्रकार के बीज
0: लेने।
1: हाँ चाहे गेहूँ बाजरा मटर सब ले लो और ऊ में भी बे दू और पानी लगातार छत जाओ ठीक है फिर लगातार 10 दिन बाद अपनी जो गेहूँ उगे भी वो लाला जी ये और करने वो जो अपन ने बीज बोए बाकी ऊपर अपन को वो बिछाने का
3: पत्ता मत्ता
1: डालने ठीक है डालने के बाद ऊ में अपन को लाला जी तुम तो सुन नहीं रहे मेरी बात
0: मुड़ी तो मटका जा रहा हूँ मैं इतनी
1: मुड़ी से नहीं मैं तो हूँ का दियो।
0: अच्छा हूँ का देने आए अब मैं तो सब देखा जा रहा हूँ और करत भी जा रहा
1: हूँ तो ठीक है सो ऊ के बाद तुम वो अपनी जो हो जाए मैं पेड़े बड़ी सी मतलब उगी आए नहीं अपने सुबह काट के आधी वही में मिला दू वही में जो अपन ने लगाई है।
0: अच्छा
1: हाओ फिर 10 दिन बाद हो जाए तो फिर से मिला दो और जब 100 दिन बाद फिर से हो जाए तो भाई पूरी छोटी छोटी करके काट लो और ऊको फिर से वही में मिला दो
0: तो फिर बन गई मट्टी
1: फिर ऊको वहाँ फिर ऊको खरुआ लेके मिक्स कर लो।
0: अच्छा
1: हाओ मिक्स करने के बाद फिर जितने अपन गेहूं कछु लगा रहे डाल दू तो वो एक अपनो रासायनिक खाद को उपयोग करे जो आपको तत्व मतलब बाँ में मिल रहा है जैसे साथी इनकी कहावत कि आप बाँ में रासायनिक बाँ में खाद में ज्यादा वो मिल जाते हैं तो इमें भी उतनो ही तत्व मिले और दो तीन चीजें और फायदा भी है इमें
0: तो अब तो बिल्कुल मैंने ध्यान से सुनने की बातें, अब तो मैं बिल्कुल बना ही ले हूं।
1: हाँ तो ई में दो तीन चीजें जो फायदा की है, एक तो इसे अपनो स्वास्थ्य सही रहे को है लालाजू, और दूसरो अपनो पर्यावरण अच्छो रहेगो लालाजू। हो देखो मैंने अगर ठोको तो और तुम तो नोरा जैसी मुड़ी नहीं मटका, उसके मुड़ी लगे मटका भी मियो कछु में तो अपनो मोह है जो मियो तुम मोह प्राला वो बतात बतात।
0: अरे भौजी तो कन्ने मुँह तो पूरी समझ में आ गई कैसे बनाया जाता।
1: हाँ हाँ तुम तो वही ले आज 2000 की बोरी आ रही रासायनिक खाद की, वही ले आज काय को जो बना हो तुम्हें तो तुम होंगे पक्के, तुम तो नाव कर रहे थे सुन के तुम होंगे पक्के आलसी।
0: अरे भौजी अब तो बिल्कुल पूरी ध्यान में आ गई कि कैसे बनाने, जरूर बना ले अब तो।
1: हाँ तो लाला जी मैं चली
0: बिल्कुल अब तो भौजी, जरूर मिट्टी बनाऊं और जरूर अपने पर्यावरण को बचाऊं।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। और साथियों अभी आपने बैरू भौजी को नाट के रूप में सुना और इनसे अमृत मिट्टी बनाना कुछ तो हमारे बैरू भौजी ने बता ही दिया है। अब हम आपको एक्सपर्ट के पास ले चलते हैं और उनकी सलाह हम लेते हैं अमृत मिट्टी बनाने के लिए। तो आइए उनसे बातचीत करने से पहले हम एक और आपको लोकगीत सुनवा देते हैं, क्योंकि मनोरंजन भी होता रहेगा और कार्यक्रम सुनवाते रहेंगे तो आनंद ही कुछ अलग आएगा। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से लोकगीत को रमेश और उनके साथियों की आवाज में।

अभी आपने इस प्यारे से लोकगीत को सुना और लोकगीत का आनंद लिया। आइए अब आपको आलोक जी के पास ले चलते हैं, अमृत मिट्टी बनाना वो बता रहे हैं, तो जानकारी ध्यान से सुनिएगा बाद में।

0: आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, तो तैयार रहिएगा। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से चर्चा को।
1: जैसा कि है अमृत मिट्टी, अमृत मतलब कि जो भी जीवनदायी चीज होता है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिट्टी को एक जीवन, अलग तरह का जीवन दिया जाता है, जिसमें उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अमृत मिट्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से आया कि अगर मान लीजिए अब मानव नहीं रहता है, जब जंगल रहते हैं तो जंगल के पौधे बिना बारिश और बिना अतिरिक्त खाद के कैसे हरियाली रहते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर अमृत मिट्टी को हम लोगों ने बनाने का कोशिश किया है। अमृत मिट्टी अगर हम बात करें तो अमृत मिट्टी के लिए बहुत सारे अलग बहुत तरीके नहीं है और बाहरी तत्व की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आप जान सकते हैं केचुआ खाद के लिए केचुआ लाना पड़ेगा या दूसरी चीजें को लाना पड़ेगा, लेकिन अमृत मिट्टी एक ऐसा है कि आपका अगर गांव में जो भी चीज संसाधन है, जैसे गाय है या आपकी खेती का से निकलने वाला जो भी खरपतवार है, तो इसी से तैयार होता है। देखिए ये तो अमृत मिट्टी को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको भूमि की उर्वरा शक्ति जो बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके पास जैसा भी संसाधन है इसके हिसाब से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष जगह तैयार करने की जरूरत नहीं होती है, आपके पास जो भी भूमि उपलब्ध हो और जिस भूमि में आप दूसरा उपयोग नहीं करना चाह रहे हो या नहीं करते हो तो उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। ये इस अमृत मिट्टी को बनाने में करीब करीब 90 से 100 दिन लगते हैं, लेकिन इसकी उर्वरा शक्ति इतनी तेज और इसकी जो जल धारण शक्ति काफी अधिक बढ़ जाती है, तो कम पानी में भी आपकी खेती बहुत अच्छी होती है। अमृत मिट्टी बनाने के लिए जो सामानों की जरूरत होती है या जो भी संसाधन की जरूरत होती है वो आपके आसपास या आपके खेत खलियान से ही निकल के आता है। जैसा अगर कह सकते हैं गाय का गोबर, गाय का मूत्र, खेती बाड़ी से जो खरपतवार जो निकल के आता है वो, ये बस ये दो तीन चीजें हैं और जो भी बीज आप लगाते हैं वो, बस यही चीजें हैं जो आप अमृत मिट्टी में आसानी से इसका उपयोग करके अमृत मिट्टी बना सकते हैं। इस अमृत मिट्टी की खासियत ये है कि आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार की मिट्टी का उपचार कर सकते हैं, कोई मिट्टी को आप अमृत मिट्टी में परिवर्तित कर सकते हैं और या अमृत मिट्टी कहीं बनाकर किसी भी मिट्टी में डाल सकते हैं। अच्छा। ये तो मैं जैसा आपको बताया कि ये आपके ऊपर सारा निर्भर करता है कि आप छोटे से जगह पर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं या बड़े भाग में आप बनाना चाहते हैं। जैसा मैंने अभी जस्ट बताया कि बुंदेलखंड के बारे में अगर थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, बुंदेलखंड में जनरली आप देखोगे वो काफी सूखा ग्रस्त जगह है और यहाँ पर जलधारण क्षमता बहुत कम है। जलधारण क्षमता कम होने की वजह से क्या होता है कि उनको बार बार पानी की, किसी भी फसल में बार बार पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम अमृत मिट्टी के इस प्रोसेस को अगर बुंदेलखंड में लाएं, जैसा मैंने अभी रामपाल भाई को भी बताया और अपने किसान भाइयों को भी बताया कि अमृत मिट्टी एक ऐसा मिट्टी उपचार है या खाद आप कर भी सकते हैं जिसमें गुणवत्ता जो भूमि या मिट्टी की गुणवत्ता उर्वरा शक्ति काफी बढ़ जाती है और जल धारण क्षमता भी बढ़ती है जिससे आपको सिंचाई देर से कम देनी पड़ती है। अब जैसा अभी मैं बता रहा हूँ कि जो अमृत मिट्टी है वो आपके ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप कितनी भूमि में इसका प्रयोग करना चाहते हैं, आपके पास संसाधन कितने उपलब्ध हैं, आपकी अगर खेती हो रही है या कोई जमीन है वो कितना खाली पड़ा हुआ है जिसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो उस पर सारा चीज निर्भर करता है। अगर आप मान लीजिए खेत का प्रयोग कर रहे हैं खेती के लिए, तो आप ऐसे भाग का प्रयोग करें जहां पर खेती नहीं करते हैं और फिर उस मिट्टी का उपयोग आप खाद के रूप में अपनी भूमि में कर सकते हैं। या अगर आपका खेत खाली है, कोई लगता है कि बंजर है या जहाँ पर हम खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर भी हम इसका प्रयोग करके अमृत मिट्टी बना सकते हैं और उसके बाद फिर उसी खेत में आप दूसरी फसल ले सकते हैं।
2: और
1: क्या, और ये तो और भी अच्छी बात है कि किचन गार्डन क्योंकि घर के नजदीक ही होता है
2: जी।
1: तो एक अमृत मिट्टी का प्रयोग करके अगर हम किचन गार्डन करते हैं तो जो जो भी फसल होगी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब कि

0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम शुभकल में पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आलोक प्रभात जी ने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, हमारे वार्ताकार थी हमारी प्राची जी और बहुत अच्छी उन्होंने सलाह दी है कि अगर आपकी खेती में गुणवत्ता लानी है, खेती को अच्छा बनाना है तो अमृत मिट्टी डालकर हम इसको अच्छा बना सकते हैं और उनकी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये अमृत मिट्टी बनाना चूंकि बहुत ही सरल है जो कि उन्होंने बताया है, आप भी अपने घर पर अमृत मिट्टी बनाकर अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। जैसे बार बार हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले आ रहे हैं कि हमें अब रासायनिक दवाएं जो हम खेतों में डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, उन पर हमें रोक लगानी चाहिए, दूसरों को समझाना चाहिए इस बारे में, क्योंकि जो बीमारियां पनप रही हैं ऐसी रिपोर्ट बता रही है कि अधिकतर बीमारी जो रासायनिक खाद से उगाई गई सब्जियों से हो रही हैं। तमाम प्रकार की बीमारी जो अभी तक हमने सुनी भी नहीं थी, इस प्रकार की बीमारी अब हमें सुनने को मिल रही है। तो हमें इन बीमारियों से यदि बचना है तो जैविक पद्धति की ओर फिर से हमें मुड़ना होगा, जैविक पद्धति से हमें अपनी खेती को करना होगा। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है कि जैविक खेती हमारे किसान साथी इसको अप करें और अपनी खेती में बदलाव कर अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। और जो हम अपने खेती के साथ, जो धरती के साथ, जो मिट्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उससे भी हम बच सकते हैं। साथियों हमें आशा है कि इस कार्यक्रम को सुनकर हमारे श्रोता साथियों के मन में बहुत सारे ढेर सारे ऐसे सवाल होंगे जो हमसे पूछना चाहते होंगे और साथ साथ में बताना भी चाहते हैं। तो आप हमें यदि फोन करके बता सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 9219207749, या फिर श्रोताओं आप हमें चिट्ठी के माध्यम से भी बता सकते हैं। जो पुराने हम चिट्ठी हमारे श्रोता भेजते थे हमें बहुत अच्छा लगता था, हम कार्यक्रम में उसको पढ़ते थे, जोड़ते थे, जो सुझाव रहते थे उस पर हम अमल करते थे, तब एक नया कार्यक्रम हम बनाते थे। बहुत खुशी रहती थी कि हमारे श्रोता साथियों का इतने ज्यादा स्नेह रहता है, प्यार रहता है। जैसे कि हम अभी पठा में गए थे और हमारे जो विजय जी हैं काफी नियमित श्रोता हैं और उनसे मिलकर हमें काफी अच्छा लगता है कि ऐसे हमारे नियमित श्रोता जो हमारे हर कार्यक्रम को सुनकर अपने बहुमूल्य समय निकालकर फीडबैक जरूर देते हैं, सुझाव देते हैं, चाहे वो बातें हमारी तुम्हारी कार्यक्रम हो, आज की बात हो, किसी भी कार्यक्रम के बारे में यदि उनसे जानना चाहे तो जान सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम उनको, ऐसे हमारे श्रोता साथी जैसे वीकेश जी भी हैं, ऐसे हमारे श्रोता साथियों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम में जुड़कर फीडबैक हमें देते हैं और उस फीडबैक के माध्यम पर हम कार्यक्रम बनाते हैं। हम चाहेंगे कि अब हमारे जो अगले कार्यक्रम बनेंगे उसमें आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि इस विषय पर हमें कार्यक्रम शुभकल में सुनना है, तो हम आपको रिकॉर्डिंग करेंगे और इस कार्यक्रम को बनाकर आप लोगों तक प्रस्तुत करेंगे। अब साथियों अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम शुभकल से जाने का, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात।
1: शुभकल, बदलती जलवायु के लिए।

0: साथियों नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा।
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
0: साथियों आप तो जानते हैं कि हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के अंतर्गत हम समय समय पर अलग अलग तरह की जानकारी आप सभी के लिए लेकर हाजिर होते हैं। चाहे बात करें हम रोजगार सूचनाओं की या फिर व्यक्तित्व विकास की या फिर सफल कहानियों की या फिर छोटा काम बड़ा मुनाफा की, तो जैसा समय होता है

0: वैसा काम हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो बिल्कुल साथियों, आप दिल थाम कर बैठ जाइए और अपने कानों को खोल कर रखिए, क्योंकि हम आपके लिए बेहद जानकारी लेकर आए हैं और बेहद जरूरी भी है ये जानकारी। तो आइए हम जानते हैं कि हम अपना व्यक्तित्व विकास किस तरह से निखार सकते हैं, क्या-क्या टिप्स होती हैं जिनको अपनाकर हम एक बेहतरीन पर्सनालिटी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि यदि हमारा युवा साथी कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसका व्यक्तित्व ही उसकी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि व्यक्तित्व विकास निखारना यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, ये एक युवा साथियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है और खासतौर पर समाज के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में व्यक्तित्व विकास कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे और कुछ मूल मंत्र जो रहते हैं उसे भी हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से।
0: साथियों, अगर हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो कैसे निखारें, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है। तो उसके लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जागरूक होंगे तभी हमारे अंदर व्यक्तित्व विकास होगा और साथ में हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, हमें अपने ऊपर विश्वास भी होना चाहिए कि हम इस काम के लिए परफेक्ट हैं। साथियों, 21वीं सदी में सफलता पाने का ये जो मूल मंत्र होता है, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसके पास कुछ खास चीजें हैं जैसे कॉन्फिडेंट, लुक्स, लैंग्वेज पर कमांड और कुछ खास स्किल्स हैं, तो वो 21वीं सदी का सफल व्यक्ति माना जाता है, भले ही वो किसी भी मुकाम से मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। अगर उसके पास ये गुण हैं तो वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। आज के दौर में कामयाबी का मूल मंत्र है व्यक्तित्व विकास। इसके नाम से ही कई लोग लाखों कमा लेते हैं। हर गली मोहल्ले में व्यक्तित्व विकास की क्लासों का बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है कि आप आइए और अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारेंगे, इसके लिए आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि व्यक्तित्व विकास कैसे कर सकते हैं, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, पढ़ने की आदत बनाएं, सुनने की आदत डालें, बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चेहरे के हाव भाव पर भी नियंत्रित रखिए, दूसरों को महत्व दीजिए और अपना व्यू जरूर दें, इंटरेस्ट डेवलप करें, नकारात्मक से बचें। साथियों, नकारात्मक जो शब्द होता है ये वाकई में वो सारी चीजें देखता है जो हम सोचते हैं, यानी कि अगर हम कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं तो नकारात्मक चीजें भी हमारे पास ही चली आती हैं, पीछे पीछे चली आती हैं और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये घर कर जाती है कि ये आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इन सभी चीजों से बचना है, हमें नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उस से आपको दूर रहना है और सिर्फ सकारात्मक चीजों को सोचना है, समझना है और करना भी है।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा। और जैसे कि वर्षा ने बताया है कि व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है आत्मविश्वास को बढ़ाएं। दुनिया के आधे काम तो एक शब्द से जुड़े होते हैं। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। आत्मविश्वास की ताकत आपके चेहरे से झलकती है जो आपकी छवि को निखारती है। अगर किसी कारण से आप किन्हीं चीजों से डर भी रहे हैं तो आप कभी उसे अपने चेहरे पर ना आने दें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा अपने चेहरे पर निडरता का भाव रखें, ऐसा दिखाएं कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच एक पतली लाइन होती है, उस लाइन को कभी क्रॉस ना करें वरना आपकी छवि बहुत खराब हो जाती है। आत्मविश्वास में कमी है तो एक मौका मिलता है, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो मौका बिल्कुल नहीं मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा है मनीष जी आपने, क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना वो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं गलत साबित कर देता है। तो आगे हम जहां पर व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं वहां पर पढ़ने की आदत बनाएं, ये बात भी बहुत अहम भाग है इसका और बहुत अहम रोल भी ये निभाती है।
1: जैसे कि पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है और वाक शक्ति बढ़ती है, मतलब भाषा प्रभावशाली होती है। पढ़ने से सामान्य ज्ञान बढ़ता है जिससे आपका प्रभाव सामने

0: पर अच्छा पड़ता है, साथ ही आपके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। अगर आपका ज्ञान अच्छा होगा तो आपका खुद में आत्मविश्वास महसूस होगा। पढ़ने से इंसान सीखता है और सीखने की किसी भी वस्तु से व्यक्तित्व का विकास होता है, और पढ़ने से व्यक्ति अपडेट भी रहता है, उसे वर्तमान में क्या चल रहा है पता होता है। इससे व्यक्ति की कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, साथ में उसको कई लोगों के बीच नाम भी मिलता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, पढ़ने की आदत दोस्तों ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन आजकल जो हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, आज की 21वीं सदी में लोग किताबों से कम, खासतौर से हमारे युवा साथी किताबों से कम मोबाइलों से ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी और आपको पढ़ने की यानी किताबें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, जिससे आपके पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार होगा और आपसे अगर कोई सवाल करता है तो आप उसका तत्कालीन उसका जवाब दे सकते हैं, ताकि आपको याद रहेगा कि ये सवाल मैंने कहीं पढ़ा था और इस सवाल का सही आंसर ये हो सकता है। इसलिए किताबों को अपना दोस्त बनाइए, मोबाइलों को नहीं, क्योंकि मोबाइल एक टाइम के लिए होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, आपका समय पास नहीं होता है, तब थोड़ा सा मनोरंजन आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन दोस्त जो है आप अपनी किताबों को ही बनाइए, मोबाइल को बिल्कुल भी नहीं। आगे एक और बात आती है, व्यक्तित्व विकास में हमें सुनने की आदत भी डालना है। दोस्तों कभी भी हम कहीं जाते हैं या किसी के सामने बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि लोग हमें सुने, यानी कि हम बोलते ही रहते हैं, लेकिन सामने वाला जब बोलना शुरू करता है तो हम उसकी बात को काट देते हैं, हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत आदत होती है। तो हमें क्या करना है, सुनने की आदत डालनी है, सामने वाला क्या बोल रहा है उसे ध्यान पूर्वक से सुने।
0: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि सुनने की आदत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है और व्यक्तित्व के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और यदि किसी आप जगह जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं या नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं तो सुनने की आदत आप डालिएगा, बॉस क्या कह रहा है या आपका जो साथी है वो क्या कह रहा है। आपको पता चला कि आपका साथी आपको अच्छी अच्छी चीजें बता रहा है, ज्ञान दे रहा है, और आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमें तो ये सब आता है, तो ये सारी चीजें आपके व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं रहती हैं। साथियों आगे भी हम इस कार्यक्रम में बॉडी लैंग्वेज पर क्या काम करना चाहिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे, चेहरे के भाव को कैसे नियंत्रण कर सके इस पर भी महत्वपूर्ण बात बताएंगे, दूसरों को महत्व दें ये भी बहुत जरूरी रहता है, अपना व्यू जरूर दें, इंटरेस्ट डेवलप करें, नकारात्मक सोच से बचें, ये सारी बातों को हम सुनेंगे कुछ देर बाद, यानी सुनते हैं यहाँ पर इस गीत को, और गीत के बाद फिर लौटेंगे और व्यक्तित्व विकास की जो महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे हैं उस पर चर्चा होगी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। और

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित कर।

0: नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और साथियों, हम होंगे कामयाब के अंतर्गत हम जान रहे हैं व्यक्तित्व विकास को लेकर बात कर रहे हैं।
1: तो व्यक्तित्व विकास का अगला पन्ना आता है, यानी अगली बात आती है, वो बॉडी लैंग्वेज पर कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के बोलने, उठने बैठने के तरीके से उसके व्यक्तित्व की

0: झलक दिख जाती है। इस दिशा में खुद को जागरूक बनाएं, पहले खुद में झांकें और अपनी गलतियों का अवलोकन करें, फिर उन्हें सुधारें। क्षेत्रीय बोली कई बार आपके बोलने की स्टाइल को प्रभावित करती है। जैसे जो लोग अपने गांव में खड़ी बोली बोलते हैं, उनकी इंग्लिश या हिंदी में उसकी ट्यून आ जाती है, जो कि आपके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव डालती है। अतः ऐसी कमियों को पहचानें एवं उसको सुधार करें, इससे आपके आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। अपने आप को सीमित दायरे से बाहर निकालना भी व्यक्तित्व विकास का एक हिस्सा है।
1: बिल्कुल साथियों, जैसे कि आप कई बार जानते हैं, आपके खाने का तरीका बदलें, घर में जैसे चाहे वैसे रहें, लेकिन बाहर ध्यान से रखें। जैसे आप होटल गए हैं, सभी ने वेज ऑर्डर किया है, तो आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो करें। सभी के बीच नॉनवेज ऑर्डर ना करें। अगर सब नॉनवेज खा रहे हैं तो अलग बात है, क्योंकि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तब आप वेज ऑर्डर कर सकते हैं। खाते वक्त आवाज ना करें, बोले ना, और सभी का भोजन खत्म हो उसका वेट करें, तुरंत हाथ धोकर ना बैठ जाएं। यह सभी पॉइंट डाइनिंग मैनर्स के अंतर्गत आते हैं। इनको सुधार करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा, जिससे आपका विकास होगा। उठने बैठने का तरीका सही रखें, घर में किसी के आने पर खड़े हो जाएं और उनका वेलकम करें, यानी स्वागत करें, ना कि बैठे रहें और अथवा लेटे रहें। कितना भी थके क्यों ना हो, किसी गेस्ट के आने पर उनसे बिना पूछे ना सोएं। कुछ भी खाने से पहले अगर आपके साथ कोई है तो पहले उनसे पूछे। यह सभी बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन यह सभी आपकी छवि को निखारते हैं, आपके व्यक्तित्व विकास में सहायता करते हैं। अपने लुक्स पर भी ध्यान दें, जैसे जो कपड़े आप पर अच्छे लगते हैं वही पहने। जगह एवं ओकेजन देखकर ही फैशन करें। आपकी हाइट, हेल्थ एवं बॉडी कलर के हिसाब से ही कपड़े पहने, इससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है। और अगर आपको इन बातों की समझ होगी तो लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, ये छोटी छोटी बातें हैं। आपको लग रही होंगी कि ये तो बेफुजूली बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपके व्यक्तित्व निखारने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। अगली बात आती है कि आपके चेहरे के भाव को आप नियंत्रण रखें। किसी से भी मुस्कुराकर मिलें, भले आपका मूड खराब हो, आप परेशान हो, लेकिन इसका एहसास किसी को ना होने दें। इससे आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, आपको लोग पसंद करते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं। कभी कभी हमें किन्हीं बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो आपके चेहरे पर दिखने लगता है। कोई बात बुरी लगने पर आप हमारे चेहरे पर दिखने लगता है, हाव भाव दिखने लगता है, आपके व्यक्तित्व को गलत तरह से सबके सामने रखते हैं। इसलिए अपने भावों को नियंत्रण करें। एक्सप्रेशन या भाव भी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सहायक होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने। कई सारे लोग होते हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने भाव को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जो कि उनके लिए और सामने वाले के लिए भी कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित होता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी बॉडी की हर एक चीज पर कंट्रोल होना अति आवश्यक होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज हमें कहाँ बोलनी है, कौन नहीं बोलनी है, कब हमें गुस्सा करना है, कब गुस्सा नहीं करना है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति का गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो सकता, वो दुनिया में किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इस बात को आप याद रखिए और हमेशा अपने गुस्से को नियंत्रित रखिए।
0: अगली बात आती है कि दूसरों को महत्व दें, क्योंकि यह एक जरूरी पॉइंट भी है। इसे एक उदाहरण से समझें। अगर आपके घर में शादी है जिसमें कई रस्में होती हैं, जैसे कि हल्दी की रस्म होती है, बहुत सारी रस्म होती है वगैरह वगैरह, इन रस्मों में अपनों की जरूरत होती है, जहां आपको हमेशा दूसरों को आगे करना चाहिए। ये नहीं कि आप आगे आ जाए और दूसरों को पीछे रहने दें, नहीं, आपको दूसरों को आगे करना चाहिए, अपने आप को एवं घर के लोगों के अलावा।

0: अतिथियों को पहले शामिल करना चाहिए। इससे जैसे फुगा फूफा भाई, मामा माई भाई और जीजा जीजी भाई, इनको तो पहले ही आगे कर दो जाके, ना तो परेशान हो जाओगे। तो ये सारी हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि आप अतिथि आपके घर में है तो उनको यदि किसी रस्म में शामिल हो रहे हैं तो उनको सबसे पहले आगे करें। इससे भी आपका व्यक्तित्व सभी की नजरों में अच्छा होता है और ऐसा ही व्यवहार हर जगह होना चाहिए। यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी रहते हैं। इससे आपको लोग व्यवहारिक समझते हैं, जो कि सामाजिक दृष्टि से बहुत मायने रखता है।
1: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने, क्योंकि कई सारे ऐसे मौके होते हैं जब हम घर में दोस्तों को, रिश्तेदारों को और कई सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, लेकिन हम खुशी के मारे हम ये भूल जाते हैं कि हमने किसी को इनवाइट भी किया था, और सारी फोटो में या सारी रस्मों में हम अपने ही परिवार के लोग, अपने ही घर के लोगों को शामिल करते हैं, उन लोगों के बारे में हम सोचते भी नहीं है। या फिर यूं कह लीजिए कि कुछ बुजुर्ग हमारे रिलेशन वाले होते हैं, उनको भी हम कहीं ना कहीं साइड में ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अरे वो तो बुजुर्ग हैं, वो क्या समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, फीलिंग उन्हें भी होती है, उनको भी लगता है कि भाई हम इतने पुराने हैं, घर के बड़े हैं, रिश्तेदारी में भी बड़े हैं, लेकिन हमें पूछा नहीं है। तो ये आपकी एक पर्सनालिटी को दिखाता है, आपके व्यक्तित्व को दिखाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। इसलिए हमेशा अपने से पहले अपने जो बुलाए हैं उन लोगों का सम्मान करें, उन लोगों को महत्व दें। अब बारी आती है दोस्तों, अपना व्यू जरूर दें। आपने कई बार अपने पारिवारिक मामले या ऑफिशियल मामलों में ठीक से सुनने के बाद हर बात पर अपना दृष्टिकोण जरूर सामने रखें। बस ऐसा करते वक्त पोलाइट शब्दों का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे, आपकी बात से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। सभी को ध्यान में रखते हुए बात करें। अगर सही शब्द एवं सही तरीके से बात कहेंगे तो किसी के विरोध में कहने पर भी उसे बुरा नहीं लगेगा, अपितु वो आपको समझने की कोशिश करेगा। इसके में बहुत सहायक होते हैं, इनसे आप एक भीड़ से अलग छवि बनाते हैं। तो कभी भी आपको लगे कोई मामला हो रहा है, कोई डिसीजन आपके परिवार में या आपके ऑफिस में या आपकी क्लास में लिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो, तो अपना व्यू आप जरूर दें। आपकी जो भी राय है, जो भी प्रतिक्रिया है, आप उनको जरूर बताएं। क्या होगा, उनको पसंद नहीं आएगा आपका सुझाव, लेकिन सुझाव आपको जरूर देना है, जैसे आप हमारे कार्यक्रम का सुझाव देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और कुछ बातें और बची हुई हैं, जैसे कि इंटरेस्ट डेवलपमेंट करें, यानी इंटरेस्ट ये जरूरी है, आपकी हॉबी हो। अगर ऐसा नहीं है तो देखें कि आपकी किन बातों में रुचि है, या अपनी रुचि बढ़ाएं, क्योंकि अपने काम के अलावा हमारे पास कोई अलग चीज होनी चाहिए जिसके साथ हम समय बिताएं। इससे आपको खुद को जानने में मदद मिलती है, जिससे आपका विकास भी होता है। और आखिरी बात है, नकारात्मक सोच से आप बचें, क्योंकि किसी भी कार्य के पहले ही उसके नेगेटिव पॉइंट पर बात ना करें। कई बार यह हमारी आदत में आ जाता है और जिससे हमारी छवि बिगड़ती है और हम में भी कॉन्फिडेंस भी की कमी आ जाती है। अगर ऐसे ही भाव मन से आए तो उसको हटाने की कोशिश करें, नहीं तो यह आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी व्यक्तित्व विकास को लेकर, जो हमें आपको बतानी थी। हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी बड़े अच्छी तरीके से इन बातों को ध्यान में रखेंगे, ताकि हम आगे चलकर ये अपना जो व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं उसमें हम बिल्कुल सही उतरे। सही मायने में कहें कि आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, तो इसके लिए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल मनीष जी, और हमें अब लगता है कि हमारी क्लास यहीं पर खत्म होने वाली है, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें बता दी हैं कि व्यक्तित्व विकास के लिए किन किन बातों का ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है, जो आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं और आपकी एक अलग छवि बनाकर रखती हैं। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, कार्यक्रम भी यहीं समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है भाई लोग इस कार्यक्रम से जाने का। तो अब आखिरी में एक बात जो रह गई है वो ये है कि यह कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा है, हमें जरूर फोन

0: माध्यम से बताएं, इसका सुझाव दें। जैसा कि हमने कार्यक्रम में बताया कि अपना व्यू जरूर दें, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आप अपनी बात को जरूर रखें। तो आप हमें भी इस कार्यक्रम का सुझाव दीजिए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, और बताइए कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा है, जिसके लिए हमारा नंबर है
1: 92 19 20 77 49।
0: साथियों, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं और फोन भी कर सकते हैं। साथ ही में हमारा पता भी है, जिस पर आप पत्र के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा।
0: साथियों, अब हमें दीजिए जाने की अनुमति, यानी आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की अनुमति।
0: फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए
1: नमस्कार।

नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो। तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। इस कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात कर रहे थेंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसो सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को, उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी और साथ में जाने के भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था कि नहीं। देखो जिसे शादी उनकी हो रही थी उनको ने देखो भी है तो या नहीं देखो, तो क्योंकि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जात, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाती और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती और फिर देख भी की तो बातें अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपनों ने देखो कि जितनी भी कहानी अपनों ने स्त्री में सुनी हैगी उनने कोनों ने भी जानी गई कि हमने देखो हतो उन्हें जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या कोके जैसे कि जो मानदान रहते हैंगे बेओरे देखे आती तो लड़की को देखने की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की ये कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रहो हैगो और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से भी आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगी और पढ़ाई को लेके भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज की ये कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों देर नहीं करा थेंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहेंगे। तो आ चला थेंगे राधापुर।

0: राम राम अम्मा।
1: राम राम।
0: कहाँ नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं। कहाँ करती हैं अम्मा आप?
1: आंगनवाड़ी में काम कर रही।
0: आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रही?
1: हम कर रहे 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ 20 साल से कर।
0: अच्छा तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कहते हैं वो?
1: हम मायको झांसी में है।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी में है गोविंद चौरा है, ढाल के नीचे राज डॉक्टर, आपने सुना हूँ कभी?
0: हाँ, हाँ,
1: उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा उन्हीं के नीचे रहते थे। आपके परिवार में कौन है? तो
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, बहन थे, 3 बहन थे।
0: अच्छा तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा आते।
0: अच्छा आपके घर पे क्या काम होते?
1: वहाँ पे तो चौका बर्तन करते सब कहते हो, जगह जमीन नहीं होती, मजबूरी करते और बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
0: अच्छा।

0: पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, हमारी अम्मा अकेली का करती।
1: हाँ, सही बात।
0: तो अम्मा ने सबको लगा दो, तो कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समो छोटो।
1: अच्छा, 10 रुपया।
0: हाँ, 10 रुपया से। अच्छा। हमारे भैया को 15 रुपया में लगते, हमें 10। अच्छा। बच्चा खिलाते उनके।
1: अच्छा।
0: खाना देती वे और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपए 10 रुपए दे देती महीना भर में।
1: तो मतलब इस तरह से चलत
0: रहता है।
1: अच्छा, अगर आप आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और का काम आपने, पढ़ाई कितने तक करी है आपने?
0: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
1: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
0: हमारी उम्र 2 साल कम रह गई, 60 साल।
1: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। तुमने बचपन में काम, तो जैसे आपने बताया कि काम भी करे, लेकिन उसे और छोटे जो बचपन होते ही, जब मान लो अपन काम करवे की उम्र नहीं होती,
0: जब ध्यान थोड़ी रह, जब तो खेलता ही खाता।
1: हाँ, तो वही खेलवे की बात हम कर रहे हैं कि आपने खेल कौन कौन से खेले।
0: अब खेल अब का कंची खेल रहा है, कहीं रेडी खेल रहा है, ये ये खेल खेलते थे और चपट्टा खेल रहा है।
1: चपट्टा का
0: सावन को मुझे चपेटा कलर।
1: अच्छा,
0: जो खेल रहा है।
1: तो सावन में आप गीत भी गाती हूँ? हाँ। खेलत में गीत, आप गीत सुनाओ।
0: हम नहीं जाना तो मैंने गीत में था।
1: अच्छा, गीत ही नहीं आते? पहले तो गाती नहीं आप?
0: अब यार भूल गए, अब तो बुढ़ापो है, ऐसे कुछ ही नहीं आता।
1: इतने बुढ़ापो नहीं है आपको? 60 साल हो रही, लेकिन बुढ़ापो नहीं लगा था आपको?
0: बुढ़ापो का नहीं है।
1: तो कौन सा गीत गाती
0: है? कौन नहीं गाते
1: हैं आप? गाते नहीं। अच्छा, आपकी सहेली कौन कौन आती?
0: हमारी सहेली अब सब बूढ़े हो गए, अब सहेली को जाने कहाँ कहाँ गई, को अंगूरी ना तो काउ को पुष्पा ना तो, ऐसे सबके नाम आते सबके, कोई की कहीं शादी हो गई, कहीं की कोई की कहीं हो, अपने अपने घर चली गई सब।
1: अब मिलती हूँ आप लोग?
0: हाँ, वह मिल जाते, कभी कभी इकट्ठे हो जाता, खुशी तो जो से आप लोग मायके में आप तो सब रहने मिला तो अच्छा लगता।
1: अच्छा लगते। अच्छा अम्मा, जो बताओ की आपके समय में पहनावे कौन कौन सी थी, मतलब पैरत का कपड़ा कौन कौन सी चलाती थी?
0: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी होती, सो चड्डी कपड़ा की सिला के पहनते और फिर आके पहनते और फिर आके नहीं मिली तो बिस्कुट पहन लेते, बुक सेट है ये पहन लेते, और हम तुमने फिर आके दे रही तो भी पहन लेंगे बस, और यही पहरा हो।
1: मतलब कोनो अलग से नहीं है?
0: कोनो अलग से नहीं है। तो
1: अच्छा, तो अब हम आपसे बात करें, आपकी शादी कितनी उम्र में हुई?
0: हमारी अब हमें तो ध्यान नहीं है बहन, कितने उम्र में हमारी भैया थी,
1: तो मतलब कछु तो अंदाजा हुई है। जब आप जाना था शादी के बारे में?
0: नहीं जानते, जब हमारी शादी हो गई थी
1: बिल्कुल नहीं जानती। अच्छा, जिसे आपकी शादी हो रही थी वो आपने देखो तो?
0: हाँ,
1: पहले से देखो तो?
0: नहीं नहीं, पहले कहाँ देखा देखते, पहले ना कोई मोड़ी देखा था ना कोई मोड़ा देखा था।
1: अच्छा,
0: बेटे से तो आते ही हमारे बाप माताई ने 8-9 साल के साथ, 9 साल के हमारे पिताजी गुजर गए थे, 9 साल की शादी कर रही थी।
1: अच्छा।
0: तो जिन जिनको काम करते हमारी माताई ने कही क्या 500 रुपया दे दो मोड़ी को ब्याह करने, बोली तुम्हें 10-10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो, 500 चुका उन लोगों ने सबने 100-100 रुपया फोन में दाए थे।
1: अच्छा,
0: तो वही बताए कई मैं
1: 500 रुपया
0: नहीं सबसे जैसे कछु कछु लोगों ने ऐसे पुनो आती है देखे उन लोगों ने और ज्यादा दे रहे, वैसे ही के बिटिया को पुन ब्याह हो रहा पुण्य में दे दो पैसा।
1: अच्छा,
0: बड़े बड़े सेठ लोग
1: तो
0: सही ऐसे वहाँ ब्याह हो गया।
1: अच्छा, जब आपकी ब्याह होगा एक ही बात कितने आपकी ससुराल गए थे राधापुर में भाई है
0: ना? हाँ, राधापुर
1: ससुराल है आपकी। तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्में आपकी भाई हैंगे, जैसे पहले दिन तेल मंडप?
0: हाँ, पहले पहले मंडप तेल लगाओ, फिर मंडप बाओ, फिर टीका।
1: अच्छा, 3 ही दिन को ब्याह हो तो?
0: हाँ, 3 दिन को होता।
1: तो बारात 3 दिन मिली रही थी कि
0: एक? नहीं, एक ही दिन, 3 दिन मिली रही थी बारात,
1: तेल वाला दिन आ जाती
0: नहीं आते टीका के देना।
1: अच्छा,
0: और फिर भावर मावर बरतती, फिर वो देना छोड़ी जाती बरात दूसरे दिन जाती।
1: दूसरे दिन जाती। तो जब
0: जयमाला डरी
1: तो आपकी
0: जयमाला नहीं डरी? हम जयमाला नहीं डरी बहन, हमें तो वो लट्ठा को सफेद लट्ठा नहीं जिसे मार्किन से अपन खोलियन पे, हाँ खोलियन पे चढ़ा वही को लांगा वही को दुपट्टा।
1: अच्छा,
0: और जब तुम जो होट बल्लाल बापो बिलाइस।
1: अच्छा, जो सब
0: पहला
1: था तो मतलब
0: जयमाला
1: नहीं
0: भेजी थे क्या? सो मड़वा की तरह सीधो ऐसे ही मड़वा, जयमाला नहीं लड़का मड़वा।
1: अच्छा, चावल जी का ढाले जाता आपको कुछ
0: बताओ? नहीं बताता।

0: पता।
1: अच्छा चावल को कछु पता ही नहीं है, खा ले दिया
0: तो मड़वा के नेचे और खड़ो कर ला हमारी बुआ ने बोले चावल मार दे सब ने
1: खरु के बाद
0: बस फिर बाहर चलो गो लड़का। फिर पंगत मंगत हो लगी, पंगत मंगत भाई फिर चढ़ाओ मड़ो चढ़ो फिर गाँव रे
1: का चढ़ो तो आपको
0: हमें तेज न चढ़ी थी 1 किलो के खम बच जा
1: किलो की
0: प्याज ना। हाँ 1 किलो की प्याज ना आँखों में बज जा
1: बस
0: और जो इतने कह रखते थे नहीं थे
1: बाजू बंद।
0: हाँ
1: हाँ
0: बेचारे थे।
1: अच्छा
0: आदर में
1: तो अबे रखे हो आप।
0: हाँ वो अब भारे बेन की बात है।
1: अच्छा दे
0: छह लड़का होगा, छह लड़का के भी आओ कर ले।
1: अच्छा
0: अच्छा कहाँ से आ रहे हो।
1: सही बात है। अच्छा आपकी विदा कहाँ है भाई दी।
0: हमारी डोल में डोल जब डोली नहीं रहा।
1: हाँ हाँ
0: वही में वही थी विदा।
1: वो तो ऐसे इतनी तक
0: जहाँ से नहीं उतने से तो फिर बैलगाड़ी में आए थे।
1: बैलगाड़ी में
0: बैठी थी हाँ ऐसे कब बैठ जाते हमारी गाड़ी गई से
1: नहीं थी। अच्छा
0: बैलगाड़ी से होती पहले विदा सवाई की होती है मजी का। पहले देखते वाहन कहाँ थे ओरछा तक नंगा जाते खेलार तक नंगा जाते। अब तो एक कदम नहीं मिल रहा आदमी।
1: अब तो अगर तुम्हें भी जाना है
0: अगर तुम्हें कारस देव में जाना है तो गाड़ी
1: से जाना है।
0: जाना है
1: सही बात है। तो फिर जब आप विदा होके इतने आई थे ससुराल में कुकू मिलो आपको।
0: ससुराल में सास ससुर जेठानी।
1: अच्छा आपके अम्मी नंबर की है थी।
0: हम दूसरे नंबर के नानी लो दो
1: नंदन की शादी हुई।
0: हाँ
1: अच्छा शादी के बाद
0: बड़ी हती
1: बड़ी हती। अच्छा तो फिर आपके एटे का रस में वही मतलब कंकन छूटा
0: कंकन छूटो हाथे लगे थे दो तीन चार दिन रहे थे फिर चले गए थे।
1: अच्छा और खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई।
0: खिचड़ी बनाई थी
1: और आपने खुद बनाई थी।
0: नहीं बना पाई थी हमने हमारी जेठानी ने बना दी थी।
1: अच्छा
0: और चमचा से तरवा दी थी
1: नाम होगा तो
0: हाँ
1: तो
0: ओरेंडर द्वारे में ओरेंडर वा दे।
1: अच्छा
0: ओरेंडर
1: वाली फिर जैसे जब आपने खिचड़ी बनाई
0: और
1: सबने खाई तो फिर
0: नहीं। कहा
1: नहीं मिलो तो
0: हमें नहीं कछु नहीं मिलो तो हमें तो और पैसा रखने
1: पड़े थे चूल्हे में वो देने।
0: हाँ ये उल्टा
1: नहीं
0: हो रहा पहले देता ही थे अभी भी देता मोरन के।
1: हाँ हाँ।
0: जैसे खिचड़ी बनवा तो चूल्हे में रखवा बहू से सास लेते हुए पैसा।
1: अच्छा
0: चाहे 10 धरे चाहे 11 हो चाहे 100 लेकिन वो सास ले ओरेंडा तो ओरेंड पे रखत बहु।
1: अच्छा,
0: तो बेबी सास ले।
1: अच्छा ये
0: जी की सास ना हो तो जेठानी
1: ले। तो जैसे पहले एक अब एक रसम होती जूड़ा खुलते ही सास तो आपके समय में खुलते
0: नहीं हमारे समय में नहीं खुलते
1: जूड़ा नहीं खुलते
0: नहीं।
1: अच्छा आपकी
0: जो छोड़ा खोलते जो
1: छोड़ा खोलते
0: जो छोड़ा
1: तो ये भी पैसा
0: सास खोल सकती है
1: मतलब
0: जब सास रे में आ जा तो जो छोड़ा खोल सकती सास
1: नहीं तो
0: महा थुज रही।
1: अच्छा आपको नहीं पता
0: ना छोटे आते तो कछु दे
1: फिर आपके काम जब आप दूसरी बार आए अपने ससुराल में फिर कैसे काम कराती जेठानी के संग मिल के कराती या लड़ाई होती।
0: जेठानी के संग कराते लड़ाई का एक होती
1: कभी लड़ाई नहीं हुई आप।
0: नहीं हमारी नहीं भाई
1: जेठानी
0: सास से भाई कब
1: नहीं होती आप सीधी हती के दो जने
0: दो एक से आते मिल के कर लेते हो बस सबने फिर से आने होगा ऐसे सब अलग अलग होगा।
1: अच्छा और इतने सासरी में का काम होती है आपकी खेती
0: खेती होता है रात से खेती होती।
1: अच्छा
0: पहले मोटर कहाँ थी रात ऐसे खेती होती तो रात चलाते रहते।
1: अच्छा और जैसे जब खेती की आपने बात करी है कि तो आप सुबह से चक्की भी पी सकती
0: है। चक्की पी सकते हो सवेरे 4 बजे से।
1: कितने बजे उठती
0: है 4 बजे उठ जाते 4 बजे से पी सकते 5-6 किलो नाच पीस लेते
1: 5 किलो रोज पीसने।
0: हाँ रोज उतना तो जेठानी पी सकती
1: तो भी कभी पी सकती आप जैसे सुबह से उठ के पी सकती
0: हो 4 बजे से भी पी सकती
1: संगे पी सकती
0: हूँ ना कबू संगे कबू अलग अलग पी सकती।
1: अच्छा फिर उनके बाद चक्की पीसने के बाद काका काम फिर
0: गोबर मोबर डाल रखते।
1: कितनी गाय भैंसे होती
0: आप 10-12 गैया होती गोबर मोबर डाल रखते झाड़ा झूठी कर रखते फिर एक जनी रोटी बनाने लगती एक जनी काम करने लगती।
1: अच्छा ऊपर वो काम कर लेती
0: तो फिर कुबा पे 8 बजे तक निकल जाते सो रात चलाते दिन भर।
1: अच्छा वो हाथ से बहाने आते
0: नहीं बैलन सब
1: बैलन से चलते
0: घर में नहीं आती लोहे
1: का
0: सब वही चलाते रहते कब हम स्वाद जेठानी चलाती कब हम चलाते रहते
1: तो मतलब लड़ाई नहीं होती आपकी। अच्छा आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा है।
0: हमारा 6 लड़का
1: 6 लड़का और लड़की
0: लड़की नहीं है एक
1: लड़की नहीं है एक तो आपने लड़का

0: पड़ाव जो हुए।
1: हाँ पाए खो पड़ाव में परेशानी हटी से कुछ नहीं पड़ा।
0: अच्छा
1: पाँच पाँच पढ़ा जाइए स्कूल में बस।
0: अच्छा सरकारी। हाँ तो अब सबकी शादी हुए।
1: हाँ सबकी हो गई, सब सब नाती ने तुलन की हो गई।
0: अच्छा नातीन की भी हो। हाँ। कितनी नाती है?
1: छह नाती है, छह नातने हैं।
0: अच्छा तो
1: बिलाती
0: को मतलब बिलात बड़ा परिवार है।
1: हाँ तो छह लड़का है तो दो दो हैं सबके।
0: अच्छा, अच्छा
1: और एक के चार हैं बड़े के, तीन मोड़ी हैं।
0: तो एक मोड़ी
1: तो आप बिरोबर हो गए,
0: बिलात बड़ा परिवार है।
1: तीन ना ना मोड़ी के दो मोड़ी मोड़ा होगा, एक के छोटी एक के मोड़ा होगा, एक के मंझले मोड़ा की के मोड़ी है मोड़ा है वो।
0: तो बहुत बड़ा परिवार है, आपको अच्छा लगा
1: थी।
0: तो
1: आप सुबह सब जगह लीपो पोतो झाड़ो चौक फूलो बस फिर
0: खेल गाना
1: गाते हैं।
0: भूलने नहीं आते, याद करने आते। बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी हैं अम्मा। लेकिन एक बात और, आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही हैं आप?
1: 20 साल से ज्यादा हो गई।
0: जैसे आपने पढ़ाई 5 तक करी, तो आंगनबाड़ी में कैसे है आपकी नौकरी लग गई?
1: आंगनबाड़ी में वही लग गई थी।
0: कैसे लग गई थी मतलब?
1: पहले उन्होंने 4 जन्म के कागज दिए थे भर के, तो सबने 200 रुपया में लगते।
0: अच्छा
1: तो सब जना ने कही 200 रुपया में का खा रहे, हमें नहीं करने। हमें नहीं करने से फिर बोली चाची तुम लग जाओ, अभी 200 में रह कभी ज्यादा भी हो सकत। इन्हें 350 में लगते, हमें 200 रुपया।
0: धीरे धीरे करके
1: तो फिर हम इनके ससुर बोले ला जाओ हम दे देबू करे, तुम्हें 2-4 पहली नाच खा भी के रहने बजे का कर। इनके ससुर दे देते 2-4 पहली नाच, हम पानी भरे आते इनको तो फिर लगे रहे इनके। तो पानी तो अभी भी अभी छोड़ दो, हमने बनक नहीं लगे। जब से हमने आंगनबाड़ी करी जब इसे पानी भर उनको मतलब खावे पीवे की परेशानी से, जैसे नहीं आ तो जो दे तो सकते खावे, नहीं करते तो को दे रहे।
0: सही बात
1: है, दे रहे तो को भी ना करे।
0: और आज आपको कितनी मिल जाती मतलब आपको घर चला भी ला के मिल जाता आपको?
1: आप 5,000 होगा ये 2-3 महीना, नहीं 2,500 हो जाते। 350 है हमारे, फिर 1500
0: भाई। अभी तो फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए आपके पैसा, बहुत बढ़िया। आपके पूरे जीवन को अनुभव कर रहा हो मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने का सीखो?
1: हम जो खेती किसानी सीखी आंगनबाड़ी कर ली फिर से जाकर।
0: नहीं आपको क्या लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दें?
1: चौपे में तो महत्व देखो, आप सोच रहे हैं आदमी के पढ़ लिख लेते तो और अच्छे हो जाते, लेकिन पैसे ही नहीं है तो कहाँ पढ़ा लिख रहे हैं।
0: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई जरूरी है
1: अब जैसा पेट को तो रोटी नहीं है, पढ़ बे की का सोच रहे बताओ।
0: सही बात है, लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल, फ्री किताबें मिल रही
1: है, ड्रेस
0: मिल
1: रही है। लेकिन मिल रहा पहले कहाँ मिला?
0: हाँ पहले नहीं मिला तो, लेकिन अब मिल रही तो अभी के नाम में पढ़ाई चाहिए है ना। बिल्कुल। तो अम्मा और का वो चाहती हूँ आप अपनी तरफ से
1: और का कहेंगे
0: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय, तो उनके लाने का संदेश दे वो चाहती है अपनी लड़की को पढ़ाए चाहिए कि नहीं?
1: अपनी को तो सब हमारी मोड़ी सब 8-8 पढ़ी नातनी नाती पढ़े
0: तो पढ़ाए चाहिए।
1: हाँ सब पढ़ रहे, को पढ़ रहा हो को बड़ी बड़ी हो गई सब साथ साथ 8-8 में करके छोड़ दो ब्याह पढ़ दो नातन की।
0: बहुत बढ़िया आप
1: नातन को पढ़ दो, अब दो नाती पढ़ रहे।
0: चलो बढ़िया अम्मा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने पूरे जीवन के बारे में हमें बताओ, ये बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

रेडियो अपनी बात है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन और सुन रहे थे लक्ष्मी जी को, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जानो है गो के इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो है गो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, इनको बचपन कैसो बीतो है गो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी, जी सब बातें अपन और ने जानी हैंगी। और साथ में इनने बताई हैगी कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी, लेकिन नौकरी इनकी लग गई जब बहुत अच्छी बात हैगी, कहे कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ा महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढती, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे, होते भटक रहे हैंगे। तो ऐसे अपने कैवे को जो मतलब है वो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचन लगा थेंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उकी शादी कर दो, या फिर बड़े हो गए सिर्फ उनको चौका वासन करने आ है गो, घर को काम ही देखने आ है गो, लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी। ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैंगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपना परिवार चलाने में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेना पड़ता। तो देखो अब अपना समय होते वो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को, लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो इमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गाँव में या आपके आस पास कोनो ऐसे लोग हैंगे या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप उन्हें सुनबो चाहतेंगे, तो ई के लाने हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारा पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। और साथ ही आप हमें अपनी राय सुझाव फोन के माध्यम से भी दे सकते हैं, साथ में आप हमें SMS भी कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैं। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई है, क्या की आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब एकदम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैं, तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सकते हैं अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो आप अपना समय होते गो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दो जावे की इजाजत, अपनी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार, और चला चला सुनो आप गीत खो जी खो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक विशेष वार्तालाप को हम सुनेंगे, क्योंकि अपनी बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी गिर गया है और ऐसे में हमारे किसान साथियों को क्या समस्या आ रही है, उस पर भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत करेंगे। साथ साथ में हमारे किसान साथी, हमारे जो जान पठा के विजय जी हैं, उन्होंने सवाल किया था कि हमारे जो धान की खेती, उन्होंने कुछ जगह हमारे धान की खेती भी हुई है, तो उसमें नैनो खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। चूंकि एक्सपर्ट आज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो कल हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। लेकिन आज इस विषय जो समसामयिक चर्चा भी है कि क्या इस मौसम में क्या देखभाल, क्या किसानों को सावधानी, किस तरीके तैयारी, क्या करना चाहिए, इस विषय पर बातचीत आप करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम को। लेकिन इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाता, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहती।

0: सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और खेत खलिहान कार्यक्रम में साथियों हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और समय समय पर मौसम आधारित जानकारी देते हैं। किसानों को किस तरीके से खेती में अपनी परिवर्तन करना चाहिए, क्या कुछ किस मौसम में कौन सी फसलों को लगाना चाहिए, कौन से बीज लगाना चाहिए, बीज उपचार की विधि, तमाम प्रकार की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी। आज हम जो आप देख रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बहुत सारे हमारे किसान साथियों की फसल भी उन्होंने लगा दी है लेकिन बहुत सारी फसल नष्ट भी हो गई है। आज हम देख रहे थे, सुन भी रहे थे कई शहरों में अत्यधिक बारिश होने के कारण बहुत सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। कई कई किसान साथियों ने अपनी फसलों को बो भी नहीं पाए हैं, लेकिन अब जायज के चूँकि अब समय आ रहा है कि हम कौन सी फसल लगाएं। अगर सब्जियों की बात करें तो कौन सी ऐसी सब्जी है जो इस मौसम में लगा सकते हैं, तो आज हम इस मौसम में कौन सी हम लोग सब्जियों को लगा सकते हैं, कौन सी ऐसी पद्धति है जिसको हम अपने क्षेत्र में अपने खेती में अपना सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर, और सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम।
0: तो डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि इस मौसम में चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और इस मौसम में किसान साथी भी परेशान हैं, तो कौन सी ऐसी सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं ताकि उनकी जो आजीविका है वो चल सके।
1: जी सर, जैसा कि सर ने बताया है कि इस मौसम में सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, मतलब जरूरत से 2 गुनी तक बारिश हो गई है, जिसकी वजह से अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में लगी हुई सब्जियां और अदर फसलें भी सभी को नुकसान हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ, कई फसलें तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और कुछ फसलें जो हैं जो 70 से 80% तक नष्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या बाजार में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। अब किसान भाइयों को इसमें सुधार के लिए कुछ विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम फसलों को नए तरीके से लगा सकते हैं और उनको अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे किसान साथी सब्जियों को लगाकर उत्पादन अधिक ले सकते हैं। तो यही दिमाग में सवाल चलता है कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको इस मौसम में हम लोग लगा सकते हैं और इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरीफ सीजन जो अभी चल रहा है, जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, इसमें क्या है कि बारिश बहुत लंबी चली गई है, जिसकी वजह से फसलों की बुवाई की विधियों में थोड़ा सा परिवर्तन करके, क्योंकि जो सब्जियां हैं उनमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब हम पहले सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उसको हम दूसरी जगह मेन खेत में लगा सकते हैं।
0: सब्जियों को किस तरीके से लगा सकते हैं?
1: जी सर, सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि ऐसी फसलें जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे, इनकी जो पौध होती है वो हम पहले नर्सरी में, या बोल सकते हैं हम प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर में हम तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अभी हमारे खेत तैयार नहीं है, तो फसल तैयार नर्सरी तैयार होने में भी लगभग 30 दिन का समय लगता है, तो चूंकि हमारे पास 30 दिन एक्स्ट्रा हैं, उनका हम कहीं छोटी जगह में पौध तैयार करें और खेत का अपन प्रबंधन साथ साथ में करते रहें, और जैसे ही हमको मौसम 1 या 2 दिन का खुला दिखे और जैसे ही हमारी सीडलिंग 20 दिन से ऊपर की हो जाए, मतलब यह उसकी हाइट जो होती है लंबाई वो 10 सेंटीमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर के बीच में हो, उस टाइम हमें रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है।
0: जी,
1: तो हम खेतों में अपना जिस दिन खुला समय मिले उसी दिन हम खेत में रोपाई की क्रिया को करें।
0: जी। और रुपाई की क्रिया की अगर बात करें तो हम किस तरीके से रुपाई, चूंकि एक विधि रहती है रुपाई की, तो कौन सी ऐसी
1: जी
0: विधि
1: सर,
0: है, कितनी दूरी पे उसको लगाना चाहिए?
1: जी सर, जैसे हम अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग दूरी तय की गई है मीटर के हिसाब से, क्योंकि अभी क्या है कि बरसात का मौसम है तो ज्यादा बारिश की वजह से खरपतवार की भी संख्या ज्यादा बढ़ती है खेतों में, तो इसको ध्यान में रखते हैं हम फसलों की थोड़ा दूरी होती है वो एक लाइन मेथड में हम करें, क्योंकि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी बराबर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कृषि क्रिया करने में आसानी रहती है। जैसे टमाटर के लिए हम जनरली 60x60 पे लगाते हैं, मिर्ची पे हम 60x45 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम पौधे को रोपण कर सकते हैं, और भट्टे में भी हम 60x60 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम भट्टे को रोपण कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और इसमें अगर लगाने की बात करें तो कौन से खाद बीज अपन को

0: उनके लिए अभी खाद की भी समस्या बहुत सारी हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको खेतों में यूरिया नहीं देना चाहिए अभी। यूरिया क्या करता है कि किसी भी फसल या खरपतवार दोनों को ही जल्दी से उसकी बढ़ोतरी कर देता है ग्रोथ में, तो उसको हम रोकने के लिए हम उसकी जगह क्या नाम है MOP और DAP का हम उपयोग कर सकते हैं, वो भी आधी मात्रा का, जिससे क्या है कि हम इसको टॉप ड्रेसिंग रूप में या बुवाई के साथ साथ बेसल डोज के रूप में आधार खरपतवार आधार उर्वरक के रूप में हम उसको पौधों के साथ में ही दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो और इस खास तौर पर बरसात के मौसम में किसान साथियों किस तरीके से देखभाल करना चाहिए?
0: जी सर बिल्कुल। अभी क्या होगा जैसे जैसे खरपतवार ज्यादा आएंगे तो खेतों में क्या होगा अभी मौसम कीड़े भी ज्यादा आएंगे, उसके साथ साथ बीमारियों की संख्या भी बढ़ेगी। अब चूंकि हम सबसे पहले अभी सीजन चल रहा है सोलनेसियस वेजिटेबल का, जैसे टमाटर मिर्ची भट्टे और भिंडी, अब इनमें होता क्या है कि सर सबसे ज्यादा फ्रूट बोरर और अभी पत्तियों पे आपको लीफ कर्ल वायरस दिखेगा, तो ये क्या होता है जैसे मौसम ठंडा होता है तो इनका अटैक बढ़ जाता है, तो इनको रोकने के लिए हम समय समय पे या तो बीज को उपचारित करते रहना चाहिए, और यदि आपकी खेत में ट्रांसप्लांटिंग हो गई है तो हम इसके लिए समय समय पे हम M45 का स्प्रे कर सकते हैं हम।
1: बिल्कुल। और जिन किसान साथियों की सब्जी, चूंकि कुछ कुछ किसान साथियों की बची हुई है सब्जियां, तो उसमें खास तौर पर अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारी बीमारी फैल रही हैं और बहुत सारी सड़न हो रही है, मतलब सड़ रही हैं सब्जियां, तो क्या करना चाहिए उन किसान साथियों
0: बिल्कुल
1: को?
0: सर, अभी क्या है जैसे सर ने बताया कि खेतों में पानी की ज्यादा होने की वजह से सब्जियां की रूट गलन और पत्तियों में सड़न पैदा हो रही, जिसको हम पीथियम एपेंडिडर्मेटम एक बीमारी होती है फंगस के थ्रू ये फैलता है, तो हम इसको उपचार के लिए हम समय समय पे कार्बन डाइऑक्सीक्लोराइड COC जिसको हम बोलते हैं, जिसका 1% सोल्यूशन और साथ में ही हम मैनकोजेब या M45 का 1% सोल्यूशन हम समय समय पर 7 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे कर दें, तो इससे तुरंत उस डिसीज को आप रोक सकते हैं या प्रबंधन कर सकते हैं हम उसका।
1: बहुत बढ़िया जानकारी। और साथ साथ में हमारे किसान साथियों को ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिन किसान साथियों ने खेती चूंकि नहीं कर पाई है, वो आगे चलकर किस तरीके से खेतों की अपनी तैयारी कर सकें।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी हम रेनी सीजन या खरीफ में हम थोड़ा सा लेट हो गए वो भी बरसात की वजह से, तो हमारे जो आने वाला जो सीजन है वो खरीफ का होगा, क्योंकि खरीफ में सब्जियों का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम खेत को प्री प्लान तैयार करें, और हम अगेती फसलें जैसे फूल गोभी के पत्ता गोभी और इसी के साथ साथ हम टमाटर को भी फिर से ले सकते हैं खेतों में, और साथ साथ में अभी धनिया का उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा आपको अगले सीजन में।
1: एक चीज और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि चूंकि भिंडी भी हमारे किसान साथी लगाते हैं, लगाए भी हैं, क्या करना चाहिए उन किसान साथियों को?
0: जी सर, जैसा कि हमने बताया था कि इसके अलावा भी भिंडी एक महत्वपूर्ण फसल है इस सीजन के लिए, क्योंकि उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं होती है, तो उसके लिए किसान भाइयों को जो बीज है वो आपको वायरल फ्री बीज अभी मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारी उसकी वैरायटियां हैं, तो हम उसको ले सकते हैं, जैसे हम बात करें अरका नाम का वैरायटी की या पूसा भिंडी 5 की या आपका पूसा मखमली वैरायटी की या काशी लालमा वैरायटी, ये भिंडी में सर्वोत्तम उत्पादन के साथ साथ ये वायरस फ्री वैरायटी भी हैं, जो चूंकि भिंडी के उत्पादन को बढ़ाती हैं और ये जल्दी से जल्दी इसमें पिकिंग आ जाती है बाकी भिंडी की वैरायटी की अपेक्षा।
1: जी। और कितने दिनों में मतलब सब्जी हमने तैयार हो जाती है?
0: भिंडी क्या है सर, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, मतलब ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, अगर भिंडी को ट्रांसप्लांटिंग लगाने के तुरंत 45 दिन बाद हम इसकी पहली पिकिंग खेत में ले सकते हैं, और ये पूरी जो फसल का ड्यूरेशन है वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है आपका, तो चूंकि जो मौसम की वजह से ड्यूरेशन छोटा रह गया उसमें आप पूरी फसल भिंडी की ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी जो हमारे खेत कल्याण कार्यक्रम में दी जा रही है वो बेहद उनके लिए फायदेमंद भी होगी, और हमारे किसान साथियों के लिए एक नई पद्धति के रूप में अपने किसान साथी अपने खेतों में लगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, ताकि उनकी आजीविका को हम बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद किसान भाइयों।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अभी आपने डॉक्टर देवेंद्र जी को सुना, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने सब्जियों को लेकर दी है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी तैयारी कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी है जो अपने खेतों में वो लगा सकते हैं, कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम अपनी खेती को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा हमारे किसान साथियों को अधिक होगा। और हमें वैज्ञानिक पद्धति से बात करनी चाहिए और खेती भी करनी चाहिए, साथ साथ में जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर को लेकर, ड्रिप को लेकर, तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसका भी हमारे किसान साथियों को लाभ लेना चाहिए। हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9219207749, या फिर चिट्ठी के माध्यम से आज आप भेजना चाहते हैं तो पत्र व्यवहार का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से भजन को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम आसपास। जी हाँ दोस्तों, आसपास कार्यक्रम में अपन आप आसपास को कवरेज करते हैं, जो अपने आसपास में चल रहे गतिविधियां हो रही उनको अपन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि जो अपने पुख नक्षत्र है, तो पुख नक्षत्र में कई गांव के लोग आउट हैं, कई जगह से लोग बाग आउट हैं, सो उनसे उनकी राय जानी है पन्ने के वे काय के लाने आए हैं और कब से आ रहे हैं। सो दोस्तों ऐसे भैया ब्रिजकिशोर जी आए हैं जो कुगा गांव से आए हैं। सो दोस्तों अपन ब्रिजकिशोर भैया जी से मिले हैं और उनसे जाने कि वे कब से पुख नक्षत्र में आ रहे हो, पुख नक्षत्र को का महत्व है और ये कौन सी श्रद्धा भाव से आ रहे हैं। सो दोस्तों भैया ब्रिजकिशोर जी से अपन जाने इन बातें को। और दोस्तों ब्रिजकिशोर भैया जी से मिलने से पहले अपन एक बढ़िया से गीत को सुनते हैं और गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दिन के संग में।

0: देखो दोस्तों, जो सुनो अपन सब जन ने गीत और गीत को आनंद लो है, गीत खुंगा रहे थे राजकुमार त्यागी जी और उनकी संगी साथी। आप दोस्तों एक क्रम में अपन गीत के संगे संगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और कार्यक्रम में मिलते हैं भैया ब्रज किशोर जी से जो कुगा गांव से आए हैं। सो दोस्तों आओ भैया जी से जाना थे उनको नाम पतो और जी कब से पोख नक्षत्र में आ रहे हैं।
1: सो आप पहला तो अपना नाम पतो बताओ, क्या नाम आपको? ब्रज किशोर जी, कहाँ के लिए विवाह है अपन? कहाँ के लिए विवाह है अपन? हाँ, कौन सा गांव?
2: कुगा गांव।
1: कुगा गांव जो कितने पड़ता अपने कुगा गांव? मऊ के बातर पे पड़ता। अब अपन बात करें पुख नक्षत्र की, तो आप कितने साल से आ रहे पुखन में?
2: ब्रजन के आ रहे।
1: अच्छा,
2: जो भी नहीं है बंद के।
1: हाँ।
2: अब जो है तो जब जब मिलू तब आ जा।
1: तो आप जैसे इतने आउत पुख नक्षत्र में, तो आप कौन सी श्रद्धा लेके आउत के हमारा कुछ कोनो काम होने चाहिए या फिर हम तो भगवान के दर्शन कर भी के लाने आउत?
2: दर्शन के लाने आउत के हमें तो खुशी है कि भगवान के दर्शन करे। हाँ। हम अपनी मेहनत से।
1: हाँ।
2: तुम सहा दीजिए बस।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि मतलब हम मेहनत करें और दर्शन कर भी के लाने आओ, आपको सहारो है। चलो बहुत अच्छी।
2: हम खेती में अपनी काम में भी मेहनत करें तो हमें सहा दीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसमें लाभ होना चाहिए, हमारे अच्छी होने पूर्ति होना
2: चाहिए।
1: क्या बात है, सो यही खिलाने आप
2: जाए तुम गलत माया दू।
1: हाँ।
2: ना हमें जो कछुनी चाने।
1: अच्छा,
2: हमें तो अपनी पसीना डालो।
1: हाँ।
2: जो हमें
1: मेहनत को फल चाने,
2: मेहनत को हमें गंगा माई दे दू।
1: अच्छा,
2: तो गंगा माई से हम सब कछु करें।
1: बिल्कुल सही बात है। तो आप जो एक दिन से आ रहे, तो अभी तक आपने भगवान से कोनो अर्जी लगाई? भगवान से कोनो अर्जी लगाई कि भगवान हमारा काम जो हो जाए तो हम
2: लड़ाई से हमारा हो जाए?
1: अच्छा, लगाई से हो जा रहा। चलो बहुत अच्छी बात है, देखो कितनी बढ़िया बात है कि अर्जी लगाई से हो जा रहा।
2: और देखो, हाँ। एक बच्ची के लाने लगाई थी।
1: हाँ।
2: है तो लला के थे।
1: अच्छा,
2: हमसे बच्चा बहुत हूँ।
1: हाँ।
2: वो हमारी अर्जी जा रही थी हम मोड़ियन से।
1: हाँ।
2: हम अपनी जायदाद में इसके न कह पावे, तुम इतने सहाद है जो की हम तुम्हारे बदन अपने मेहनत की बात से मोड़ी
1: निपटा दे उनकी ब्याह।
2: बहुत अच्छी अच्छे घायल में पहुंची।
1: अच्छा,
2: निपटा दें।
1: हाँ। हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के जो आपने इतने प्रयास करो, भगवान ने आए अपनी श्रद्धा रखी, आपको सफलता मिली है। और एक क्रम में जैसे आप घर से चलत, तो का आपको पहला से जो पता के हम जा रहे या फिर आपको ऑटोमेटिक इतयावे को प्लान बन जा, भगवान खुद ही बुला लेते?
2: खुद खबा का आदे
1: है,
2: खुद खबा का आदे से पोखन को।
1: हाँ।
2: उन्हें देखो पोख आ रहा है।
1: हाँ।
2: तो देखे कही के खुद खबा का आदे से वही अपन कैलेंडर में देखो।
1: हाँ।
2: तो फलाने तारीख का है
1: पोख।
2: हाँ। तो अपने वही तारीख का चले जाए अपने पास
3: जो। अच्छा। है वो कहाँ है?
1: अच्छा, जैसे आदमी पोख में कहे तो बेसी का नहीं है, इस पोख की कछु ज्यादा महत्ता महत्ता है का?
2: जब तो आउट आदमी ना, तो आदमी जा कहा रोजी ना हो जाए।
1: पुख को काय महत्व तो रहते अशोक है कौन से?
2: जब पोखन में भी आए है तो महत्व तो होगी। जब पोखन पोखन भी आए है थे
1: भगवान जी।
2: हुँ?
1: अच्छा, पोखन पोखन आए थे भगवान जाकर, तो यही से आप और भी पोखन में आप?
2: पोखन में।
1: चलो बहुत अच्छी बात है। और एक क्रम में जैसे के अपने थे आउट, तो खाना पीना का घर से सब ले आओ, तो व्यवस्था कहाँ से बना लिया?
2: मन से अपना खाना पीना बना लिया।
1: अच्छा,
2: तो भगवान के दुआ बट रहा हो अपने
1: ले
2: ली गाड़ी का भगने, आप लोग खाना पीना ले आप लोग खाओ बस।
1: हाँ। चलो अच्छी बात है। तो भगवान जी कुल मिला के अपनी जो श्रद्धा है वह पूरी करते थे आज से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखो कितनी अच्छी बात बताई खिलाने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दादा जी।
0: देखो दोस्तों, जयते भैया ब्रज किशोर जी जो कुगा गांव के रेवेवाए थे। दोस्तों इनसे अपन ने कितनी अच्छी बातें जानी हैं और भैया जी ने बहुत ही अच्छी तरीका से अपनी बातें को बताई हैं कि हम कब से आ रहे हैं और काका हमारी मनोकामनाएं पूरी भई हैं। सो भैया जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद, इनने तो कीमती समय निकाल के अपन को दो। अब दोस्तों एक क्रम में आप और कह रहे हुए कि माता दीन भैया बहुत टाइम से बातन में लगे हैं और मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं कर रहे। सो दोस्तों आओ मनोरंजन के लाने सुनते हैं अपने एक बढ़िया से गीत को और गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में और सुनत रहो जो कार्यक्रम आसपास।

बिल्कुल दोस्तों, दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। देखो कितनो प्यारो जो गीत सुनो अपन ने और गीत को आनंद लव है। ई गीत को गा रहे थे भैया मिथिलेश कुमार जी। अब दोस्तों मिथिलेश कुमार शर्मा जी के गीत के बाद हम आप सब जन को जो बता देवे के आज को अपनो ई कार्यक्रम आसपास से जाबे को समय होगा है, सो हमें दो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है ई कार्यक्रम में ए बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे जी आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। तो दोस्तों आप सब जन को जी आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों आज की सभा इतनी संपन्न होत है, सो चलत चलत आप उन्हें लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आप उन्हें फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सकें। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे

0: देखो हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतनी समापन हो गए को समय हो गया है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।